तुम मैं मान कलाला, तुम देव उत्ते संक न मान हो, हम पुंचे सदा निहाला, हम बारक तुम पिता हमारे, तुम मुख देव खीरा, हम खिल है सब लाड लडाव है, तुम स गुणी गहीरा, तुम पूर्ण पूरे है संपूर्ण, हम पी संग अघाए, मिलत मिलत मिलत मिल रहया, नानक कहन न जाए, राम कली महला पनवा, कर कर ताल पखाव ज नयन हो, माथे वजे रबाबा, करनो मध बांसुरी बाजे, जेवा तुन आ गाजा, नृत करे कर मनुआ नाचे, आने कुगर साजा, राम को नृतकारी, पेखे पेखन हार दयाला, जेता सासी गारी रखाओ, आखार मंडली तरण सबाई, ऊपर गगन चिंदोआ, पनम चूला करत अकेला, जल ते उपत हुआ, पंच तत कर पुत्रा कीना, किरत मिलावा हुआ, चंद सूरज दु जरे चिरागा, चौ कुंड पीतर राखे, दस पातो पंच संगीता, एक पीतर साते, पिन पिन हुए पाद दिखावे, सभो निरारी पाखे, तार कर नृत होवे दिन राती, हर कड़वा जे तूरा, एक नचाव है, एक पवाव है, एक आए जाए हुए तूरा, कहो नानक

गर्भ परया जप नाथ दिन रहनाई तेरी खिंता दो दिहाई रहाओ गहरी बिपूत लाए बैठा ताड़ी मेरी तेरी मुंद्रा तारी मांगे टूका तृप्त न पावे नाद छोड़ जाचे लाज न आवे क्याल चित जोगी आसन तेरा सिंगी वाजे नित उदासेरा गुर गुर कीते बूझ न पाई फिर जोगी आवे जाई जिसन हुआ नाथ कृपाला रह रास हमारी गुर गोपाला नामे खिंता नामे बस्तर जन नानक जोगी हुआ अस्थिर क्यों जप्या नाथ दिन रहनाई हुन पाया गुर गोसाई रहाओ दूजा राम कली महला पनवा करन करा मनसोई आना दिसे कोई ठाकुर मेरा सुड़ सुजाना गुरमुख मिलिया रंग माना ऐसो रे घर समीठा गुरमुख किने विरले डीठा रहाओ निर्मल जोत अमृत नाम पीत अमर पहे ने काम तन मन शीतल अग्नि निवारी अंधरू प्रगटे संसारी क्या देवो जा सब कुछ तेरा सब बलिहार जाओ लख बेरा तन मन जियो पिंड दे साजिया गुर कृपा ते नीच निवाजिया खोल किवारा महल बुलाया जैसा सा तैसा दिखलाया कहो नानक सब पड़दा टूटा हौ तेरा तू मैं मन मूठा राम कली महला पंजवा सेवक लायो अपनी सेव अमृत नाम दियो मुख देव सगली चिंता आप निवारी जिस गुर कहो सद बलिहारी ताज मारे पूरे सदगुर बाजे अनघ तूरे सदगुर रहाओ महिमा जाकी गैर गंभीर होए निहार देज तीर जाके बंधन काटे राय सो नर भौर न जो नहीं पाए जाके अंतर पलट्यो आप ताको नाही दुख संताप ला रतन से पाले परया फिर कुटम ओ जन ले तरया ना ज परम न दुबदा दूजा एको एक निरंजन पूजा जल का देखो आप दयाल कहो नानक प्रा मिले रसाल राम कली महला पनवा कंते छुटकी अपनी तारी प्रभ की आज्ञा लगी प्यारी जो कुछ करे सो मन मेरे मीठा ता यो अजद नयन डीठा हम ओ जानी रे मेरी गई बलाए बुरगी निवारी ममता गुर पूरे लियो समझाए रखाओ कर कृपा राख्यो गुर सरना गुर पकराए हर के चरना बीस बिसवे जामन ठहराने गुर पार ब्रह्म एक ही जाने जो जो किन्नो हम तिसके दास प्रा मेरे को सगल निवास ना को दूत नहीं बैराई गल मिल चाले एक पाई जा को

पटल गुर का शब्द अमृत रस पियो ता तेरा हो निर्मल जियो सोधत सोधत सोध विचारा बिन हर भगत नहीं छुटकारा सोहर भजन साध कै संग मन तन रापे हर कै रंग तोड़ सियाणप बहुच तराई मन बिर हर नावे जाए ना काई दया धारी गोविंद गुसाई हर हर नानक टेक टकाई राम करी महला पंजवां संत कै संग राम रंकेल आगे जमस्यो होए ना मेल अंगबुद का पया विनास दुर्मत होई सगली नास राम नाम गुण गाए पंडित कर्म कांड अंकार ना काजे कुशल सेती कर

हर शरण मन तन हर ओई आया, आनंद हर रूप दिखाया। तिसी की ओर सदीव जाके किन्ने गए जीव, सिमरत हर करत निधान रखन हार निदान। सर्व की रेण होवी जे आप मिटाए मलीजे।

कारी कृष्णा हुआ बाणी ब्रह्मा वेद अथर्वण करणी कीर्त लया पदविण पूजा सतविण संजम जतविण कहे जनेऊ नाभो धोवो तिलक चढ़ावो सोच विण सोच न होई कल प्रवान कतेब कुरान पोथी पंडित रहे पुराण नानक नाओ पया रहे मान हर करता तू एको जान नानक ना मिले वडियाई एदू उपर कर्म नहीं जे कर हुंदे मंगण जाएगे फिर ओलामा मिले तही राम कली महला पहला जग प्रबुद्ध मड़ी बंधावे आसन त्याग काए सज पावे ममता मोह कामन हितकारी ना अवधूती ना संसारी जोगी बैस रहो दुखदा दुख भागे हर कर्मांगत लाज ना लाग गए रखाओ गावे गीत चिन्ह आप क्यों लागी निवरे प्रताप गुर कै शब्द रते मन पाए तिखिया सहज विचारी गाए पसम चढ़ाए करे पाखंड माया मोह सह जम डंड पूटे खापर पीख ना पाए बंधन बाध्या आवे जाए बिंद ना रख जति कहावे माई मांगत त्रै लोभावे निर्दया नहीं जोत को जाला बूढ़त बूढ़े सर्व जंजाला पेख करे खिंता बो थटुआ झूठो खेल खिले बो नटुआ अंतर अगन चिंता बो जारे विण कर्मा कैसे उतर सपारे मुंदरा फटक बनाई कान मुक्त नहीं विद्या विज्ञान जे वह इंद्री साध लुभाना पशु पय नहीं मिटे निशाना त्रिब्द लोगा त्रिब्द जोगा तब विचारे चूकस सोगा उज्जल साच सो शब्द होए जोगी जूत विचारे सोए तुझ पय नवनिध तू करने जोग थाप थापे करे सोहोग जत सा संजम तसो चीत नानक जोगी तिर पौन मीत राम कली महला पहला खट मट देही मन बैरागी तुरत शब्द तुन अंतर जागी वाजे अनखद मेरा मन लीना गुरबचनी सजना पतीना प्राणी राम भगत सुख पाई है गुरमुख हर हर मीठा लागे हर हर नाम समाई है रखाओ माया मोह बेवर्ज समाये सगुर पेटे मेल मलाये नाम रतन निर्मोलक हीरा चित्राता मेरा मन तीरा होमे ममता रोग न लागे राम भगत जम का पौ भागे जम जंदार ना लागे मोहे निर्मल नाम हृदय हर सोहे शब्द विचार पए निरंकारी गुरमत जागे दुरमत परहारी अनदिन जाग रहे लिवलाई जीवन मुक्त गात अंतर पाई अलेबत गुफा में रह नरारे तस्कर पंच सब संघारे पार कर जाए न मन डोलाए हज निरंतर रहो सुमाए गुरमुख जाग रहे अवधूता तबैरागी तत् परोता जग सूता मर आवे जाए बिन गुर शब्द न सोजी पाए अनघ शब्द बजे दिन राती अवद की गात गुरमुख जाती तो जानी या शब्द पछानी एको रब रहा निर्बानी सुन समात सहज मन राता तजो लोभा एको जाता गुर चेले अपना मन मानिया नानक दूजा मेड समानिया राम कली महला पहला सहा गणे ना करे विचार साए ऊपर एक अंकार जिस गुर मिले तोई विद जाने गुरमत होए तहु पछाने झूठ ना बोल पांडे सच कहिए होमे जाए शब्द कर लही है रखाओ गण गण ज्योतक कांडी कीनी पढ़े सुनावे तत् न चीनी सबसे ऊपर गुर शब्द विचार होर कथनी बदो न सगली शार नावे तोवे पूजे सैला बिनगा राते मैलो मैला गर्भ निवार मिले प्रसार्थ मुग्ध प्राण जप हर किरतार्थ वाचे वाद ना वेद विचारे हर डुबे क्यों पितरा तारे घट घट ब्रह्म चीने जन कोए सतगुर मिले त सोझी होए गणत गणिये सहसा दुख जीए गुर की शरण पवे सुख थीए कर अपराध शरण हम आया गुर हर पेटे पूर्व कमाया गुर शरण न आईये ब्रह्म न पाईये परम भुलाये जन्म मर आईये जमदर बादो मरे बेकार नारदे नाम ना शब्द आचार एक पांदे पंडित मिश्र कहावे दुखदार।

जन्मे त्यो मरण पया, जिउं रस भोग किए तेता दुख लागे, नाम सार भव जल पया, तन तन देखत गर्भ गया, तनक कामनी सुखेत वधाए, की नाम सार है परम गया, रहाव जत स संजम सील ना राखिया, प्रेत पिंजर में कष्ट पया, उन दान इसनान ना संजम, सास दिन बाद जया, लाल तिलागे नाम सारियो, आवत जावत जन्म गया, जा जम ताए केस गए मारे, सुरत नहीं मोकाल गया, हैर्स निंदा ताद पराई, हृदय नाम ना सर्व दया, बिन गुर शब्द ना गात पद पावे, राम ना बिन नरक गया, खिन में वेश करे टुआ ज्यो, मोह पा में गलत गया, एत पुद माया देख बसारी, मोह माया के मगन पया, करे विकार विथार कनेरे, तोरत शब्द बिन परम पया, हम में रोग महा दुख लागा, गुरमत ले वो रोग गया, सुख संपत को आवद देखे, सागत मान अब महान भया, जिसका इहो तान तान सो फिर लेवे, अंतर से साधु पया, अंत काल किस साथ ना चाले, जो दिसे सब तिसे माया, आद पुरख अपरम परसो प्राभ, हर नाम हृदय ले पार पया, मुए को रोवे किसे सुनावे, पय सागर असराल पया, देख कुटांब मायाग्रे मंदर, सागत जंजाल पराल पया, जहाँ आए ता तने पठाए, प्याले तने बुलाए लया, क्यों कुछ करना सो कर रहया, बक्सन हारे बक्स लया, जिन तो चाख्या राम रसायन, तिरकी संगत खोज पया, रिद्ध सिद्ध बुद्ध ज्ञान गुरु ते पाया, मुग्ध पदार्थ शरण पया, दो सो गुरमुख सम कर जाना, हरक सोग ते भ्रगत पया, आप मार गुरमुख कर पाए, नानक सह समाए लया, राम कली दक्षिणी मोहल्ला पिला, जत स संजम साज दृढ़ाया, सा सद रहीना, मेरा गुरदयाल सदा रगलीना, ऐस रह एक लिव लागी, ताचे देख पतीना रखाओ, रह गगन पुर दृढ़ समय सार।

एक मैं सर्व, सर्व मैं एका, ए सर्व गुर देख दिखाई, जिन किए खंड मंडल ब्रह्मंडा, तो प्रभ लखन ना जाई, दीपक ते दीपक परगासिया, तिर पवन जो दिखाई, सच्चे तख्त सच महली बैठे, निरपो ताड़ी लाई, मोहे गया बैरागी जोगी, काड़ काड़ किंगरी वाई, नानक शरण प्रभु की छूटे, सतगुर सच सखाई, राम कली मखला पहला, औ हठ हस मड़ी करशाया, तारण गगन कल तारी, गुरम केती शब्द उधारी, संतो रखाओ, ममता मार ओ में सुख, तिर पवन जो तुम्हारी, मनसा मार मने मैं राखे, सतगुर शब्द विचारी, सिंगी सुरत अनाहद वाजे, फड़कड़ जो तुम्हारी, पर पांच बेण तई मन राखिया, ब्रह्म अग्न पर जारी, पांच तत् मिल अहरस दीव, निर्मल जो त्योपारी, रस लौके इव तन किंगुरी, वाजे शब्द निरारी, शिव नगरी मैं आसन औदु, अलख अगम अपारी, काया नगरी इव मन राजा, पांच वसे विचारी, शब्द रवे आसन कर राजा, अदल करे गुणकारी, काल विकाल कहे कहे बपरे, जीवत मुआ मन मारी, ब्रह्मा विष्णु महेश एक मूर्त, आपे करता कारी, काया सो तरे पवसागर, आत्म तत् विचारी, गुर सेवा ते सदा सो पाया, अंतर शब्द रव्या गुणकारी, आपे मेल लय गुणदाता, होमे तृष्णा मारी, त्रै गुण मेटे चौथे वर्त, एहा भगत निरारी, गुरमुख जोग शब्द आत्म चीने, हृदय एक मोरारी, मनवा अस्थिर शब्द राता, एहा करणी सारी, वेद बादरा पाखंड औदु, गुरमुख शब्द विचारी, गुरमुख जोग कुमावे औदु, जत सत शब्द विचारी, शब्द मरे मन मारे औदु, जो जुत विचारी, माया मोह भवज लख अवधु, सब तरे कुलतारी, सब सूरज उचारे औदु, बाणी भगत विचारी, यो मन माया मोहया औदु, निरसे शब्द विचारी, आपे भगसे मेल मिलाए, नानक शरण तुम्हारी, राम कली महला तीजा, अष्टपदियां एक ओ अंकार, सतगुर प्रसाद सरमे दिया मुंदरा, कन्नी पाए जोगी, खिंसा कर तू दया, आमन जान विपूत लाए जोगी, ता तीर पवन जिन लाया, ऐसी किंगरी बजाए जोगी, जित किंगरी अनहद वाजे, हर सिंह रहे लिवलाए, रहाओ संतोख पद कर चोली जोगी, अमृत नाम पुत पाई, ज्ञान कागर डंडा जोगी, सिंगी सुरत बजाई, मान दृढ़ कर आसन बैल जोगी।

सगल जोन मैं तू सिर तरिया, अब तू सीज पावे नी सीजे, कारज सबरे मन प्रवत्याई जे, ईगा ऊगा एक ओही, जद का देखिए तत तत ओही, ते सेवत मन आस करे, जिस विसरे एक निमख न सरे, हम अपराधी निर्गुनियारे, ना के सेवा ना करु मारे, गुर बोहे थबड भागी मिलया, नानक दास संग पाथर तरिया, राम कली मोहल्ला पंजवा, ताउ बिहावे रंग रस रूप, ताउ बिहावे माए बापूत, ताउ बिहावे राज मिलक वापारा, संत बिहावे हर नाम अधारा, रचना साज बनी

राख लिगे भगत जन अपनी चरणी लाए राम, आठ पैर अपना प्रभ सिमरे एको नाम त्याए राम, त्याए सो प्रतरे पवजल रहे आमन जाना, सदा सो कल्याण कीर्तन प्रा लगा मीठा पाना, तब इश कुन्नी आस पूरी मिले सद गुर पूरिया, बिनवंत नानक प्रभ आप मेले फिर नाही दुख वसूरिया। राम कली महला पंजवा शांत सलोक, चरण कमल शरणागति अंत मंगल गुण गाम, नानक प्रभ आराधिये विपत निवारण राम शांत, प्रभ विपत निवारण त्रिवन अवरना कोए जियो, सदा सदा हर सिमर गए जल थल महियल सोए जियो, जल थल महियल पूर रहे एक निमक मनो ना विसरे, गुर चरण लागे दिन सफागे सर्व गुण जगदीसरे, कर सेव सेवक दिन सरैणी सिपावे सो होए जियो, बल जाए नानक सुखे दाते प्रकाश मनतन होए जियो। श्लोक हर सिमरत मन तन सुही बिनसी दुतिया सोच, नानक टे गोपाल की गोविंद संकट मोच, शंत पै संकट काटे नारायण दयाल जियो, हर गुण आनंद गाए प्रभ दीना नाथ प्रतपाल जियो, प्रतपाल अचुत पुरख एको तिसे सो रंग लागा, कर चरण मस्तक मेल लीने सदा आनंदन जागा, जियो पिंड गृहथान तिसका तन जोबन तन माल जियो, ससदा बल जाए नानक सर्वजिया प्रतपाल जियो। श्लोक रदन उतरे हर हरे गुण गोविंद वखियान, नांग पगड़ी टेक एक परमेश्वर रखे निदान, शंत तो स्वामी प्रवरख को अंचलता के लाग जियो, बस साधु संग दयाल देव मन की मत त्याग जियो, एक ओढ़ कीजे जियो दीजे आस एक तरणी तरे, ता संगे हर नाम रंगे संसार सागर सब तरे, जन्म मरण विकार छूटे फिर ना लागे दाग जियो, बल जाए नानक पुरख पूर्ण फिर जाका सोहाग जियो। श्लोक धर्म अर्थ हर काम ओक मुक्त पदार्थ नाथ, सगल मनोरथ पूरे नानक लिखिया माथ शंत, सगल इश मेरी पुनिया मिलिया निरंजन राय जियो, अंध पयावड पागी हो ग्रे प्रगटे प्रभ आए जियो, ग्रे लाल आए पूर्व कुमाए तागी उमा क्या गणा, बेंत पूर्ण सुख सहज दाता कमल रसना गुण पणा, आपे मिलाए गए कंठ लाए तिस बिना नहीं जाए जियो, बल जाए नानक सदा करते सब मैं रहा समाए जियो। राग राम कली महला पंजवा, राणा चुंजनड़ा गाओ सखी हरेक त्याव हो सतगुर तुम सेव सखी,

आई न मेटन को समर्थ आद सैल नीच कर होए आद देख निवेदित दोए आद होए तामुत से आना भगत बिहुना जग बोराना सब में वर्ते एक को सोए जिसनु कृपा करे तेस प्रकट होए जोग जोग थाप सदा निर्वायर जन मरण नहीं तंदा तैर जो दिसे सो आपे आप उपाय आपे कर थाप आप अगोचर तंदे लोई जोग जुगत जग जीवन सोई कर आचार सच सुख होई नाम विहुना मुक्त के होई।

आधार सर्वे थान सनंतरी तू दाता दातार जय देखा ते एक तू अंत न पारावार थान सनंतर रभरया गुर शब्दी विचार अण मंगया दान देवसी वड्डा अगम अपार दया दान दयाल तू कर कर देखन हार दया करे प्रा मेल रहे खिर में टाए उसार दाना तू बीना तुही दाना के सिरदान दाल्द पंजन दुख दलन गुरम ज्ञान ध्यान तन गए बह चूरिये तन में चीत गवार तन विरली सच संचया निर्मल नाम प्यार तन गया ता जान देहे जे राचे रंग एक मन दीजे सिर सौंपिये पी करते की टेक तंदा तापत रह गए मन में शब्द आनंद दुर्जन ते साजन पए टेटे गुर गोविंद बन बन फिरती टूंढती बस रही कारबार सतगुर मेली मिल रही जन्म मरण दुख निवार ना ना करतना छूटिये विण गुण जम पुर जाहे ना तिस एहो ना ओ है अगुण फिर पछताहे ना तिस ज्ञान ना ध्यान है ना तिस कर्म ध्यान विण नावे निरपो कहा।

मन जा गोटी सत संतोख संजमख नाल नानक गुरमुख नाम समाल कमन सो गुप्ता कमन सो मुक्ता कमन सो अंतर बहार जुगता कमन सो आवे कमन सो जाए कमन सो तिरफुन रहा समाए घट घट गुप्ता गुरमुख मुक्ता अंतर बहार शब्द सो जुगता मन मुख बिन से आवे जाए नानक गुरमुख सा समाए क्यों कर बादा सरपन खद क्यों कर खोया क्यों कर लादा क्यों कर निर्मल क्यों कर अंधियारा क्यों तत् विचार है सो गुरु हमारा दुरमत बादा सरपन खद मनमुख खोया गुरमुख लादा सतगुर मिले अंधेरा जाए नानक हो मैं मेड़।

कथियले सुन कहां करवासो ज्ञान की मुद्रा कवन कथियले घट घट कमन निवासो काल का ठीका क्यों जलाइले क्यों निरभो कर जाइए सहे संतु का आसन जाने क्यों शेदे बैराइये गुर के शब्द हमें बिख मारे ता निरकर हो गए वासो जिन रच रचिया तेस शब्द पछाण नानकता का दासो कहां ते आवे कहां यो जावे कहां यो रहे सुमाई एस

हुक्मे रहे समाई पूरे गुरते साज कमावे गात मित सब दे पाई आदि कौ बिस्माद विचार कथियले सुन निरंतर वास लिया अकल्पत मुद्रा गुर ज्ञान विचारियले धड़कड़ साचा सर्ब जीया गुर बचनी अवगत समाइये तत् निरंजन सहज लहे नानक दूजी कारना करनी सेवै सिख सो खोज लहे हुक्म बिस्माद हुक्म पछाणे जी जुत सा जाने सोई आप मेट निरालम होवे अंतर साच जोगी कहिए सोई अवगतो निर्मायल उपजे निर्गुण ते सरगुण थिया सदगुर परते परम पद पाईए साचे शब्द समाए लिया एक को सच एका जाने होमे दूजा दूर किया सो जोगी गुर शब्द पछाणे अंतर कमल प्रकाश थिया जीवित मरे ता सब कुछ सूझ है अंतर जाने सर्ब दया नानक ताको मिले वडाई आप जाने सर्ब जिया सच उपजे सच समावे साचे सूचे एक मया झूठे आवे ठवर ना पावे दूजे आवा गौण पया आवा गौण मिटे गुर शब्दी आपे परखे बगसलया एक आवेदन दूजे व्यापी नाम रसायन विसरया तो बुझे जिस आप बुझाए गुर कै सब सो मुक्त पया नानक तारे तारण हारा होमे दूजा पर हरिया मनमुग फूले जम की कान पर कर जो है हाने हान मनमुख परम पवे बेबान वे मार्ग मूस मंत्र मसान शब्द ना चीने लवे कुबान नानक साचरते सुख जान गुरमुख साचे का पौ पावे गुरमुख बाणी अगड़ कढ़ावे गुरमुख निर्मल हर गुण गावे गुरमुख पवित्र परम पद पावे गुरमुख रोम रोम हर त्यावे नानक गुरमुख सा समावे गुरमुख परचे वेद विचारी गुरमुख परचे तरिये तारी गुरमुख परचे सो शब्द ज्ञानी गुरमुख परचे अंतर विद जानी गुरमुख पाइये अलख अपार नानक गुरमुख मुक्त द्वार गुरमुख अकथ कथे विचार गुरमुख निभगे सा परवार गुरमुख जपिये अंतर प्यार गुरमुख पाइये शब्द अचार शब्द भेद जाने जानाई नानक होमे जाल समाई गुरमुख धरती साचे साजी इसमें ओपत खपत सो बाजी गुर के शब्द रपे रंग लाए साजर तो पास्यों कर जाए साज शब्द बिन पत नहीं पावे नानक बिन नावे क्यों साच समावे गुरमुख अष्ट सिद्धि सा बुद्धि गुरमुख पवजल तरगे सच सुधि गुरमुख सार अवसर विद जाने गुरमुख परविरत निर्विरत पछाणे गुरमुख तारे पार उतारे नानक गुरमुख शब्द निस्तारे नामे राते होमे जाए नाम रते सच रहे समाए नाम रते

रहो निराले, बोले नानक सुनो तुम बाले। इस कथा का दे विचार, भवजल शब्द लंघावन हार, पवन आरंभ सदगुरु मत वेला, शब्द गुरु तुरत तुन चेला, अकथ कथाले रहो निराला, नानक जुग जुग गुर गोपाला। एक सब्जित कथा विचारी, गुरमुख हो में अग्न निवारी, मैन के दंत क्यों खाइए सार, जित गर्भ जाए सो कमन आहार, हिवे का घर मंदिर अग्न पिराहन।

बुला सब तीर्थ गह, ओ तपा कैसे परमगत लह, गुर प्रसादी को सच कमावे, नानक सो तपा मोखंतर पावे महला तीजा, सो तपा ये ओ तप का ले, सदगुर नु मिले शब्द समाले, सदगुर की सेवा यो तब प्रवान, नानक सो तपा दर्घ पावे मान पौड़ी, रात दिन उपायन संसार की वर्तन, गुरमती कर चानना आनेर बिनासन, हुक्मे ही सब साजियन रव्यासा वण त्रेण, सब कुछ आपे आप है गुरमुख सदा हर पान, सब देही सोजी पई सच्चे आप बुझाई, वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई, श्लोक महला तीजा अभ्यागत ए न आखियन, जिनके चित में परम ते दे दिते नानका, ते हो जेगा तर्म आपए निरंजन परम पद, ताका भूखा होए जिसका पूजन नानका, विरला पाए कोए महला तीजा, अभ्यागत ए न आखियन, जे पढ़ कर पूजन करेन उदरे कारण अपने बैले पेह करेन, अभ्यागत से ही नानका जे आत्म गौन करेन, पाल लहन सो अपना निरकर रहन करेन, पौड़ी अंबर तरतब छोड़ेन वे सच्चा असराओ, कर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाओ, सब सच्चा हुक्म वर्तदा गुरमुख सच सुनाओ, सच्चा आप तगत सच्चा बै सच्चा करे न्याओ, सब सचो सच वर्तदा गुरमुख अलख लखाई, वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई, श्लोक महला तीजा रैनायर महाय अनंत है कूड़ी आवे जाए, भाणे चले अपने बहुती लय सजाए, राय नायर में सब किस है कर्मी पल्ले पाए, नानक नौनद पाई है जे चले तसे रजाए, महला तीजा है जे सतगुर ना सेवे हो विच होमे जन्म विनाश, रसना हरसना चखे हो कमल न होयो परगास, बिख खादी मनमुख मोआ माया मोहे विनाश, एक सहर के नाम वेण त्रिग जीवन त्रिगवास, जा आपे नदर करे पर सच्चा ता हो वेदा सुनदास, ता अनदन सेवा करे सदगुरु की कभे न छोड़े पास, जो जल में कमल अलिप तो वर्त है त्यों विच्चे गिरे उदास, जन नान करे कराया सबको क्यों पावे ते भर गुण तास, पौड़ी छत्ती जुग गुबार सा आपे ग्रंत कीनी, आपे सृट सब साजियन आप मत दीनी, सिमरत सास्त साजियन पाप पुन गणत गणीनी, जिस बुझाए सो बुझसी सच्चे शब्द पतीनी, तबे आपे आप वर्तदा आपे बगस मिलाई, वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई, श्लोक महला तीजा यो तन सबो रत है रत बिन तन न होए, जो स रत अपने तेन तन लोभ रत न होए, पए पए तन खीन होए लोभ रत विच हो जाए, ज्यों बैसंतर तात सुध होए त्यों हरका पाओ दुर्मत मैल गवाए, नानक तेजन सोने जो रखते हारंग लाए, महला तीजा राम कली रामन वसया ता बनया सीगार, गुर के शब्द कमल बिरसया ता सौंपया भगत भंडार, परम गया ता जागया चूका अज्ञान अंधार, देसनु रूप अत अगला जिस घर नाल प्यार, सदा रवे तेरे अपना तोबावंती नार, मनमुख सीगार ना जाननी जसन जन्म सवहार,
फिर घर भगती सीगार करे नित जम्मे होए खुवार सहे सारे विच सोभ ना पाए नी अगे जे करे तो जाने करतार नानक सच्चा एक है दो बच गए संसार चंगे मंदे आप लायन सो करन जे आप कराए करतार महला तीजा बिन सदगुर सेवे साथ न आवई दूजी ना ही जाए जे बो तेरा लोचिए बिन कर्मा पाया ना जाए अंतर लोभ विकार है दूजे पाए खुवाए तिन जम्मन मरण ना चुकई होमे विच दुख पाए जिनी सतगुर सिउ चित लाया सो खाली कोई ना है तिन जम की तलब ना हो गई ना ओए दुख सहा है नानक गुरमुख उबरे

समाए काहे भिख्या मंगण जाए पौड़ी हर मंदर सोई आखिए जिथों हर जाता मान दे गुरबच नहीं पाया तब आत्म राम पछाता बार मूल ना खोजिए कर माए बिधाता मनमुख हर मंदर की सार ना जाननी तिनी जन्म गवाता सब में एक वर्तदा गुरसवदी पाया जाई वाहो वाहो सच्चे पात सह तू सती नाई सलोक महला तीजा मूर्ख होवे सो सुने मूर्ख का कहना मूर्ख के क्या लक्षण है क्या मूर्ख का करना मूर्ख हो जे मुग्ध है अहंकार मरना एत कमाने सदा दुख दुख ही मैं रहना अत प्यारा पवे खूह क्यों संजम करना गुरमुख सो करे विचार ओस अलिप्तो रहना हर नाम जपे आप उधरे ओस पिछे डुबदे पी तरना नानक जोत पावे सो करे जो दे सो सहना महला पहला नानक आखे रे मना सुनिए सिख सही लेखा रब मंगेसिया बैठा कड वही दलबा पोसन आकिया बाकी जिना रही अजराइल फरेश्ता होसी आए तई आमन जान न सुजई पीड़ी गली पई ऊड़न कुट्टे नानका ओढ़क सच रही पौड़ी हर का सब शरीर है हर रव रहे सब आपे हर की कीमत ना पवे किस कहन ना जापे गुर प्रसाद दी साराई है हर पगती रापे सब मन पन हरिया होया अहंकार गवापे सब किश हर का खेल है गुरमुख से बुझाई वाहो वाहो सच्चे पात सह तू सती नाई सलोक महला पहला सहंसर दान दे इंदर रो आया परसराम रोवे कर आया अजाय सुरोवे पीख्या खाए ऐसी दर गए मिले सजाए रोवे रामन काला पया सीता लखमण विछड़ गया रोवे देसर लंक गवाए जे सीता अंधी डौरू वाए रोवे पांडव पय मजूर जिनके स्वामी रहत हदूर रोवे जनमेजा खोए गया एक ही कारण पापी पया रोवे शेख मसायक पीर अंतकाल मत लागे पीड़ रोवे राजे कन्न पड़ाए कर कर मांगे पीख्या जाए रोवे किरपन संचे तन जाए पंडित रोवे ज्ञान गवाए बाली रोवे नाहे पतार नानक दुखिया सब संसार मन्ने नाओ तो ही जन जाए औरी कर्मना लेखे लाए महला दूजा जब ताप सब कुछ मन्ने अवरकारा सा बाद नानक मन्या मन्निए बुझगे गुर प्रसाद पौड़ी काया हंस तुरमेल करते लिख पाया थमे गुप्त वर्तदा गुरमुख प्रगटाया गुण गावे गुण उच्चर गुण माये सुमाया सच्ची बाणी सच है सच मेल मिलाया सब किश आपे आप है आपे दे वड़ियाई वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई सलोक महला दूजा नानक अंधा होए कै रत्ना परखण जाए रत्ना सार ना जानई आवे आप लखाए महला दूजा रत्ना केरी गुसली रत्नी खोली आए वखर तय बन जा रहा दोहा रही सुमाए जिन गुण पल्ले नानका मानक बन जैसे रत्ना सार ना जानई अंधे वत्ते लोए पौड़ी नौ दरवाजे कया कोट है जिसमें गुप्त रखी जय वज्र कपाट ना खुलनी पुर शब्द खोली जय अनखद वाजे तुन वज दे पुर शब्द सुनी जय तेदकड़ अंतर चानना कर भगत मिली जय सब में एक वर्तदा
ਜਿਹਨੇ ਆਪੇ ਰਤਨ ਰਚਾਈ। ਵਾਹੋ ਵਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਨਾਈ। ਸਲੋਕ ਮੁਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਅੰਧੇ ਕਹਿ ਰਾਏ ਦੱਸਿਆ ਅੰਧਾ ਹੋਏ ਸੋ ਜਾਏ, ਹੋਏ ਸੁਜਾਖਾ ਨਾਨਕਾ ਹੋ ਕਿਉ ਉੱਜੜ ਪਾਏ। ਅੰਧੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਇਣ ਨਾਹੇ, ਅੰਧੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਖਸਮੋ ਕੁੱਥੇ ਜਾਏ। ਮੁਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਸਾਹਿਬ ਅੰਧਾ ਜੋ ਕੀਆ ਕਰੇ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋਏ, ਜੇਹਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੋ ਵਰਤੇ ਜੇ ਸੋ ਆਖੇ ਕੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਸੋ ਵਸਤ ਨਾ ਜਾਪਈ ਆਪੇ ਵਰਤੋ ਜਾਣ, ਨਾਨਕ ਗਾਹਕ ਕਿਉਂ ਲਏ ਤੱਕੇ ਨਾ ਵਸਤ ਪਛਾਣ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਹੋ ਕਿਉਂ ਅੰਧਾ ਆਖੀਏ ਜੇ ਹੁਕਮੋ ਅੰਧਾ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੁੱਝਈ ਅੰਧਾ ਕਹੀਏ ਸੋ ਇਹ ਪੌੜੀ। ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਗੜ ਕੋਟ ਹੈ ਸਬਦ ਸੰਤਰ ਦੇਸਾ, ਆਪੇ ਤਾੜੀ ਲਾਈਨ ਥਾਮੇ ਪਰਵੇਸਾ, ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਟ ਸਾਜੀਆਂ ਆ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਸਾ। ਗੁਰਸੇਵਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਸਜ ਪ੍ਰਗਟੀ ਏਸਾ, ਸਬਕੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਹੈ ਗੁਰਸੋਜੀ ਪਾਈ। ਵਾਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਨਾਈ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਾਹਮਣ ਰਾਤ ਹਾ

जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ, विछड़िया मेले प्रभु हर दरगह का बसीठ। हर नामो मंत्र दरड़ाएंदा कटे हो मैं रोग, नानक सतगुर तिना मिलाया जिन्ना तुरे पया संजोग। महला पंजवां, एक सज्जन

ते जब नाहे दुख जिसतू आवे चित इसके काड़िया जिदा करता मित्र सब काज सवारिया जिसतू आवे चित तो परवान जान जिसतू आवे चित बहुता ते स्थान जिसतू आवे चित तू वड़ परवारिया जिसतू आवे चित तिन कुर उधारिया। सलोक महला पंजवा। अंदरों अन्ना बारों अन्ना कूड़ी कूड़ी गावे देही तोवे चक्र बनाए माया नू बहुतावे। अंदर मैल ना उतरे होमे फिर आवे जावे नींद व्यापिया काम संतापिया मुखों हर हर कहावे। बैसुनो नाम करम हो जूता तो कुट्टे क्या फल पावे। हंसा विच बैठा बागना बनाई नित बैठा मछी नू तार लावे। जहां सभा विचार कर

पावे। सिख हंस सरवर इकट्ठे होए, सतगुर कै हुकम आवे। रतन पदार्थ माणक सरवर पर पूरे, खाए खर्चरे तोट न आवे। सरवर हंस दूर न होई, करते एवे पावे। जन नानक जिसदे मस्तक भाग तुर लिखिया, सो सिख गुरु पै आवे। आप तरिया कुटम सब तारे, सबा सिरट छिडावे। महला पंजवां, पंडित आखाए बोती राही, कोरड़

जिसनु तेरा अंग तो निर्मली हूं निर्मला, जिसनु तेरी नजर ना लेखा पुछी है, जिसनु तेरी खुशी तेरे नौनद पुंची है, जिसनु तू प्रावल तिस क्या मोशंदगी, जिसनु तेरी मेहर तो तेरी बंदगी। सलोक मोहल्ला पंजवां, ओ किरपाल स्वामी मेरे संता संग विहावे, तुदो फुले से जम जम मरदे तिन कदे न चुकन हावे। महला पंजवां, सतगुर सिमरो अपना काट आव काट काट काट, हर हर नाम जपंतिया ओए ना बंदे वाट पौड़ी, तिथे तू समरथ जिथे कोई नाहे, ओथे तेरी रख अग्नि उदर माहे, सुन कै जम के दूत नाए तेरे छड़ जाहे, पाओ जल बिखम असगाहो गुर सबदी पार पाहे, जिन को लगी प्यास अमृत से खाहे, कल में एहो पुन गुण गोविंद गाहे, सबसे नू किरपाल संभाले साहे साहे, बिरता कोई न जाए जे आवे तुदे आहे। तलोक महला पंजवां, दूजा तिसना बुझाए हो पार ब्रह्म नाम देव आधार, आगम अगोचर साहिब हो समरथ सच दातार, तू निचल निर्वैर सच सच्चा तो दरबार, कीमत कहण न जाइए अंत न पारावार, प्रभ छोड़ होर जे मंगना सब खिया रसार, से सुखिए सच सा से जिन सच्चा व्यवहार, जिन्ना लगी प्रीत प्रभ नाम सह सुखसार, नानक एक आराध्य संतन रेणार। महला पंजवां, अंध सुख विश्राम नित हर का कीर्तन गाए, अवस्यान पछाड़ देहे नानक उधर सुनाए।

मन तन हिरदे सिमर हर, आड़ पैर गुण गाओ, उपदेश सुनो तुम गुर सिखो, सच्चा ए सुआओ, जन पदार्थ सबर होए, मन में लायो पाओ, सूग सहज आंद कणा, प्रभ जपत्या दुख जाए, नानक नाम जपत सुख उपजे।

पौड़ी। वड्याई सच्चे नाम की हो जीवा सुन सुने, पशु प्रेत अज्ञान उधारे एक खने। दिन सरैन तेरा नाव तदासा जापिए, तृष्णा भुख विकराल नाए तेरे त्रापिए। रोग सोग दुख वंजे जिस नाउ मन बसे, तिसे प्राप्त लाल जो गुर शब्दी रस है। खंड ब्रह्मांड बेअंत।

जब तब संजम गुरमुख भोगी रहाओ। बुद्ध बिपूत चढ़ावो अपनी, सिंगी सुरत मिलाई, कर बैराग फिरो तन नगरी।

गोविंद हम ऐसे अपराधी जिन प्रभु जियो पिंड था दिया इसकी भाव भक्त नहीं साधी रघाव पर तन पर तन पर ती निंदा पर अपवाद ना छूटे आवा गवन होत है फुन फुन यो प्रसंग न टूटे जे कर कथा होत हर संतन एक निमखना की नो मैं फेरा लंपड़ चोर दूत मतवारे तीन संग सदा बसेरा काम क्रोध माया मद मस्तर ए संपे मोह माही दया धर्म अर गुर की सेवा ए सुपनं तरनाही दीन दयाल के पाल दमुदर भगत बछल पैहारी कहत कबीर पीर जन रखो हर सेवा करो तुम्हारी जे सिमरन

भगते बक शब्द सुनाया, सुनते सुर मन बसाया, कर करता उत पारंग कहे कबीरा सारंग, चंद सूरज दो ज्योत स्वरूप

राखी अले मन राम नामा बेदी अले जैसे कनक कला चित मांडी अले रघाओ आनी ले कुंभ पराई ले उदक राजकुमार पुरंदरीए

ऐसो दान नित नित है कीजे, आत्म जो निर्मायल कीजे, आप बराबर कंचन दीजे, राम नाम सर तऊ न पूजे, मने न कीजे रोस, जमे न दीजे दोस, निर्मल निर्वाण पद कीन लीजे, जस रस राय नंद, राजा मेरा राम चंद, परम में नामा तत् रस अमृत पीजे, राम कली बाणी सर्वदास जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पढ़िए गुनिये नाम सब सुनिए, अनपो पाव न दर्शे, लोहा कंचन हिरन हुए कैसे, जो पार सहे ना परसे, देव संसे गांठ ना छूटे, काम क्रोध माया मद मस्तर, इन पंचो मिल लूटे रघा, हम बड कब कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर हम दाते, एवद कभे नानासी, कौरव दास सबे नी समझस, भूल परे जैसे बौरे, मुए आधार नाम नारायण, जीवन प्राण तन मोरे, राम कली बाणी बेणी जियो की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, इड़ा पिंगला और सुखमना, तीन बसे इकठाई, बेणी संगम तय प्राग, मन मज्जन करे तताई, संतो तहां नरंजन राम है, गुरगम चीने बिरला कोय, तहां नरंजन रमैया होए रघाओ, देव स्थाने क्या निशानी, ते बाजे शब्द अनाहद बाणी, ते चंदना सूरज पौन ना पानी, साखी जागी गुरमुख जानी, उपजे ज्ञान दुरमत शीजे, अमृत रस गगन अंतर पीजे, इस कला जो जाने पेओ, पेटे तास परम गुरुदेव, दसम द्वारा अगम अपारा, परम पुरख की काटी, ऊपर हाट हाड़ पर आला, आले पीतर दाती, जागत रहे सो कभू ना सोवे, तीन तिलोक समाध पलोवे, बीज मंत्र ले हृदय रहे, मनुआ उल्ट सुन में गह, जागत रहे ना अलिया पाख है, पांचों इंद्री बस

स्वामी तुम दुष्ट तारे हरण के नट मोहल्ला चौथा मेरे मान जप हर हर राम रंगे हर हर कृपा करी जगदीशर हर त्यायो।

कियो रखाओ। आज्ञा मान जान सुख पाया, सुन सुन नाम तुहारो जियो। ईगा ऊहा हर तुम ही यो गुरते मंत्र दृढ़ियो। जब ते जान पाई ए बाता, ताब कुशल खेम सब तियो। साध संग नानक परगासियो।

सदगुर ज्ञान मज्जन गए नीको मिल कल मल पाप उतारे रघाओ। संगत का गुण बहुत अदकाई परसुआ गणक उधारे परस निपरस भय कुबजा कहो लय बैकुंठ सुधारे।

आवे जो बोले सो ना बिचारे। सत संगत मिले ता दृढ़ता आवे हर राम नाम निस्तारे। जब लग जियो पिंड गए साबत तबला किशना संहारे। जब कर मंदर आग लगानी कर कूप कडे पनगारे। सागत सिउ मन मेल ना करियो जिन हर हर नाम बिसारे। सागत बचन विशुआ जो डसिए तज सागत परे परारे। लग लग प्रीत बो प्रीत लगाई लग साधु संग सवारे। गुर के बचन सत सत कर माने मेरे ठाकुर बहुत प्यारे। पूर्व जन्म परचून कमाए हर हर हर नाम प्यारे। गुर प्रसाद

कहे सेवक जन माने प्रतख गुरु निस्तारे सब है ब्रह्म ब्रह्म है पसरिया मन बीजा खावारे ज्यो जन चंद्र हांस दुखिया त्रिष्ट बुद्धि अपना कर लुकी जारे प्रभु को जान अंतर हृद लोचे प्रभु जन के सास निहारे कृपा कृपा कर भगत रड़ाए जन पीछे जग निस्तारे अपने आप।

ऐ पाए भगत लागो मेरा हीरा, मन सोयो गुरमत जागा, किल बिख खीन पए सांत आई, हर उर तारियो वड़ पागा, मानमुख रंग कुसुंभ है कछुआ, ज्यों कुसुम चार दिन चागा, खेन में बिन सजाए परताप, दंड तरमरा एका लागा, सत संगत प्रीत साध अत गूढ़ी, जो रंग मजीठ बो लागा, ताया कापर चीर बो फारे, हार रंग न लहे सपागा, हर चारो रंग मिले गुर शोभा, हार रंग चलू ले रंगा, जन नानक तिनके चरण पखारे, जो हर चरणी जन लागा, माली गौड़ा मोहल्ला चौथा, मेरे मान भाज हर हर नाम गोपाला, मेरा मातन लीन पया राम नामे, मत गुरमत राम रसाला, रहाओ गुरमत नाम त्यागे हर हर, मन जपगे हर जपमाला, जिनके मस्तक लिखिया हर मिलिया हर बनमाला, जिन हर नाम त्याया तिन चूके सर्ब जंजाला, तिन जम नेड़ न आवई गुरु राखे हर रखवाला, हम बारक किशु न जानहू हर माल पिता प्रतपाला, कर माया अगनित मेलते गुरु राखे दीन दयाला, बहु मैले निर्मल होया साब केल बिख हर जस जाला, मन अंध पया गुर पाया जन नानक शब्द निहाला, माली गौड़ा महला चौथा, मेरे मान हर पाज साब केल बिख काट, हर घर उतारियो गुरपूरे, मेरा शीश की जे गुरवाट, रगाओ मेरे हर प्रभु की मैं बात सुनावे, तिस मन देवो कट काट, हर साजन मिलियो गुरपूरे, गुर बचन बिकानो हाट हाट, मकर प्राग दान बो किया शरीर दियो अध काट, बिन हर नाम को मुक्त न पावे, बो कंचन दीजे कट काट, हर कीर्त गुरमत जस गायो मन उगरे कपट कपाट, त्रिवटी फोर परम पौ पागा लय पानी मटकी माट, काल युग गुरपूरा तिन पाया जिन तुर मस्तक लिखे लिलाट, जन नानक रस अमृत पिया सवला थी पूग तिखाट, छक्का एक माली गौड़ा मोहल्ला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, रे मन टहल हर सुखसार, अवर टहलना झूठिया निर करे जम सिर मार, रगाओ जिन्ना मस्तक लिखिया ते मिले संगार, संसार पौ जल तारिया हर संत पुरख अपार, नित चरण सेवो साध के तज लोभ मोह बेकार, सब तजो दूजी आसड़ी रख आस एक निरंकार, एक परम फूले सागता बिन गुर अंध अंधार, तुर हो ना सो होया को ना मेटन हार, अगम रूप गोविंद का अनक नाम अपार, तन तन ते जन नानका जिन घर नामा उरतार, माली गौड़ा महला पंजवा राम नाम को नमस्कार, जा जबत होवत उधार, रहाओ जाके सिमरन मिटे तंद, जाके सिमरन छूटे बंद, जाके सिमरन मूर्ख चतर, जाके सिमरन कुले उधर, जाके सिमरन पौ दुख हरे, जाके सिमरन अबदा टरे, जाके सिमरन मुजद पाप, जाके सिमरन नहीं संताप, जाके सिमरन हृदय विगास, जाके सिमरन कवलादास, जाके सिमरन निध निदान, जाके सिमरन तरे निदान, पतत पावन नाम हरी ओड भगत उधार करी, हर दास दासा दीन शरण, नानक माथा संत चरण, माली गौड़ा मोहल्ला पंजवा, ऐसो सहाई हर को नाम, साध संगत पर पूर्ण काम, रगाओ बूढ़ को जैसे बेड़ी मिलत, बूझत दीवक मिलत तिलत, जलत अग्नि मिलत नीर।

प्रसाद हर समर्थ की सरना जीव पिंड तनरास मेरी प्रभ एक कारण करना रहाओ सिमर सिमर सदा सुख पाइये जीवने का मूल रब रया सरबत ठाई।

सतगुर प्रसाद। तन तन ओ राम बेन बाजे, मदर मदर तुन अनहत गाजे। रहाओ तन तन मेघा रोमावली, तन तन किसन ओढ़े कामली।

ना यो तन जले ना तस्कर ले जाए ना यो तन डूबे ना इस तन को मिले सजाए ए तन की देखो वड्याई तेजे माते अंधन जाई एक बात अनूप सुनो नर पाई ए तन बिन कहो किने परमगत पाई पंत नानक अकथ की कथा सुनाए सतगुर मिले ता यो तन पाए मारू महला पहला सूर सर सोसले सोम सर पूखले जुत कर मरत सो सुबंध कीजे मीन की चबल स्यों जुत मन राखिए उड़े न हंस न कंध चीजे मूड़े काए चे परम पुला न चीन्या परमानंद बैरागी रहाओ अजर गो जार ले अमर गो मार ले प्राता छोड़ तो अप्यो पीजे मीन की चपल स्यों जुगत मन राखिए उड़े न हंस न कंध चीजे पंत नानक जनो रवे जे हर मनो मन पवन सो अमृत पीजे मीन की चपल स्यों जुगत मन राखिए उड़े न हंस न कंध चीजे मारू महला पहला माया मुइना मन मुआ सर लहरी मैं मत बोहित जल सिर तटके साचा वखर जित मानक मन में मन मारसी सच न लागे कत राजा तरत टिके गुणी पए पंचायन रत बाबा साचा साहिब दूर ना देख सर्व ज्योत जग जीवना सिर सिर साचा लेख रहाओ ब्रह्मा बिस्न रखी मुनि शंकर इंद तपे पेखारी मान हुकम सोए दर साचे ताकी मरे अभारी जंगम जोध जती सन्यासी गुर पूरे विचारी बिन सेवा फल कभू न पावस सेवा करनी सारी नितनिया तान निगुरिया गुर निमाणिया तू मान अंधले मानक गुर पकड़िया नितानिया तू तान होम जपा नहीं जानिया गुरमती साच पछाण ना बिना ना ही दर ढोई झूठा आवन जान साचा नाम सलाहीए साचे ते तृप्त होए ज्ञान रतन मन मांजिए बौड़ना महिला होए जब लग साहिब मन वसे तब लग बिघन न होए नानक सिर दे छुट्टिए मन तन साचा सोए मारू महला पहला जोगी जुगत नाम निरमायल ताके मैल ना राती प्रीतम नाथ सदा

एको हाट साव सबना सिर वणजारे एक पाती दोवे सिरे सतगुरु नबेड़े सो बूझे जिस एक लिव लागी जियो रहे ने प्राती शब्द विसाए परम चुकाए सदा सेख दिन राती ऊपर गगन गगन पर गोरख ताका अगम गुरु पुनवासी गुर बचनी बार कर एको नानक पया उदासी राग मारू महला पहला कर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद अहिंस जागे नींद न सोवे।

सब नगरी में एको राजा सबे पवित्र है थावा बाबा देवसा सच गावा जाते सहजे सहज समावा रहाओ बुरा पला किस आपस ते जाने ए सगल विकारा यो फरमाया खजम का हुआ वरते यो संसारा इंद्री तात सबल कहियत है इंद्री किसते हुई आपे खेल करे सब करता ऐसा बूझे कोई गुर प्रसादी एक लेवे लागी दुबदा तदे बेनासी जुत पाना सो सतकर मानिया काटी जमकी फासी पंत नानक लेखा मांगे कवना या चूके मन अवमाना तास तास धर्म राय जपत है।

एक सच्चा सब सेवदी तुर भाग मिलावा होए। गुरमुख मेरे से ना विछड़े पावे सच सोए। एक भगती सार ना जाननी मनमुख परम भुलाए। ओ ना मितिया पवरतदा करना किशु ना जाए। जिस नाल जोर ना चलई खले कीचे अरदास। नानक गुरमुख नाम मन वसे ता सुन करे साबास। मारू महला तीजा मारू ते शीतल करे मनूरहो कंचन होए। सो सच्चा सालाइए तिस जीवड़ अवर न कोए। मेरे मन अन दिन त्याए हर नाओ सतगुर के भजन आराध तू अन दिन गुण गाओ रखाओ। गुरमुख एको जानिए जिन सतगुर दे बुझाए। सो सतगुर सालाइए जिदू ए सोजी पाए। सतगुर छोड़ दूजे लगे क्या करन अगे जाए। जां पुर बदे मारिए बहुती मिले सजाए। मेरा प्रभ वे प्रवाहो है ना तिस तिल ना तमाए। नानक ते शरणाई पज पौ आपे बख्श मिलाए। मारू महला चौथा कार दूजा एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद। जप्यो नाम सुख जनक गुर बचनी हर घर शरण परे। दालद पंच सुदा में मिलियो भगती पाए तरे। भगत वछर हर नाम किरतार्थ गुरम कृपा करे। मेरे मन नाम जब उधरे ध्रुव प्रहलाद बिदरदासी सुत। गुरमुख नाम तरे रघाओ कलयुग नाम प्रधान पदार्थ। भगत जना उधरे नामा जय दियो कबीर त्रिलोचन सब दुख गए चमरे। गुरमुख नाम लगे से उधरे सब किलबुख पाप टरे। जो जो नाम जपे अपराधी सब तिनके दोख पर हरे। बेसवा रपत अजामल उधरेओ मुख बोले नारायण नर हरे। नाम जब उग्र सैन गद पाई तोड़ बंधन मुक्त करे। जन को आप अनुग्रह किया हर अंगीकार करे। सेवक पैज रखे मेरा गोविंद शरण परे उधरे। जन नानक हर कृपा तारी उर तरे ओ नाम हरे। मारू महला चौथा सिद्ध समाध जप्यो लिवलाई साधक मुन जपया। जति सती संतोखी ताया मुख इंद्राध करव्या। शरण परे जप्यो

दान आए, त्याग्यो सगला मान महत्ता, दास रेण शरणाए, कहो नानक हर मिल पे एक महा आनंद सुख पाए। मारू महला पंजवा, कवन थान तीरियो है नामा, कवन बस्त अहंकारा, कवन चेन सुन ऊपर सोयो, मुक्ते सुन कर गारा। सुनो रे तू कौन कहां ते आयो, एती ना जानो केती क मुदत, चलते खबर ना पायो रघाव। सैन सीर पवन अर पानी, बजदा खिमाने प्राते, पंच तत मिल पयो संयोगा, इन मैं कवन दोराते। जिन रच रचिया पुरख विधाते, नाले हो में पाई, जन्म मरण उसी कौहाय रे, ओहा आवे जाई। वर्ण चेन नाई किश रचना, मिथ्या सगल पसारा, पंत नानक जब खेल उजार है, तब एक एक अंकारा। मारू महला पंजवा, मान मोह अर लोभ विकारा, बियो चीत ना काले हो, नाम रतन गुण हर बनजे, लाद वखर ले चाले हो। सेवक की ओढ़ किनभी प्रीत, जीवत साहेब सेव्यो अपना, चलते रखो चीत रहाओ। जैसी आज्ञा की नहीं ठाकुर, तिस्ते मुख नहीं मोरियो, सहज आनंद रखियो ग्रे पीतर, उठ ओवाहू कौ दौरियो। आज्ञा में पूख सोई कर सूखा, सो हर क नहीं जाने हो, जो जो हुक्म पयो साहेब का, सो माथे ले माने हो। पयो कृपाल ठाकुर सेवक कहो, सबरे हलत पलाता, तन सेवक सबल ओ आया, जिन्ना न खसम पछाता। मारू महला पंजवा, खुलिया कर्म कृपा पई ठाकुर, कीर्तन हर हर गाई, समथा का पाए बिश्रामा, मिट गई सगली ताई। आप मोह जीवन पदवी पाई, जीतिया वो मन पुरख विधाता, संतन की शरणाई रखाओ। काम क्रोध लोभ मोह निवारे, निवरे सगल बैराई, सद खजूर हाजर है नाजर, कथे न पयो दूराई। सुख शीतल श्रद्धा सा पूरी, होए संत सखाई, पामन पतत किए खिन पीतर, महिमा कसन ना जाई। निरपो पय सगल पय खोए, गोविंद चरण उठाई, नानक जस गावे ठाकुर का, रैन दिन सिलवलाई। मारू महला पंजवा, जो समर्थ सर्वगुण नायक, तिसको कहू न गाव सरे, छोड़ जाए खिन पीतर ताको, ओवा को फिर ताव सरे। अपने प्रभ को क्यों ना संहार सरे, बैरी संग

असाध रोग उपजो तन पीतर तरत न काहू टारियो प्रा बिसत महा दुख पायो यो नानक तत विचारियो मारू महला पंजवा चरण कम प्रवरा खे चीत हर गुण गावे नीता नीत इस बिन दूजा अवर न को आद मद अंत है सो संतन की ओट आपे आप रखाओ जाके वस है सगल संसार आपे आप आप निरंकार नानक गए।

निकुट न कब हो जाए, पाया अमोल पदार्थो छोड़ न कत हो जाए, हो नान सुख पाया तृप्त रहे आगाए। मारू महल्ला पंजवा, फूटो आंडा परम का मने पयो परगास, काटी बेरी पगे ते गुर की नी बंद खलास। आमन जान रहे हो तब तक कड़ाहा बुझ गया, गुर शीतल नाम दियो रघाव। जब ते साधु संग पया तो छोड़ गए निगहार, जिसकी अटक तिसे ते छुटी तो कहाँ करे कोटवार। चूका पारा कर्म का होए ने कर्मा, सागर ते कंडे चढ़े गुर कीने तरमा। सच थान सच बैठ का सच स्वाव बनाया, सच पूंजी सच वखरो नानक कर पाया। मारू महल्ला पंजवा, वेद पुकारे मुगते पंडित का मामन का माठा। मोनी होए बैठा एकांती हृदय कल्पन गाठा, होए उदासी गिरता चलेओ छुटके नाही नाठा। जी की कह पै बात कहा, आ मुक्त मोको प्रामेले ऐसो कहाँ लहा रहाओ। तपसी करके देही सादी मनुआ दैद स्थाना, ब्रह्मचार ब्रह्म तकीना हृदय पया गुमाना। सन्यासी होए के तीर्थ प्रमेयो उसमें क्रोध बेगाना, कुंगर बाद पै

हरख सोग लोभ मोह रहत है। निर्मल हर के संता तिनकी तूड़ पाए मन मेरा, या दया करे भगवंता। कहो नानक गुर पूरा मिलया ता उतरी मन की चिंता। मेरा अंतर जामी हर राया, सब के जाने मेरे जी का प्रीतम। बिसर गए बक बाया हरहाओ दूजा। मारू महला पंजवां। कोट लाख सर्व को राजा, जिस हृदय नाम तुम्हारा। जाको नाम न दिया मेरे सतगुरु।

गर्भ मैं जिन प्रत पारिया, जियो पिंड दे सा सवारिया, तोई बधाता खिन खिन जपी है, जिस सिमरत अवगुण सब टकी है, चरण कमल उर अंतर धारहो, बिखिया बनते जियो उधारहो, करण पला मिटे बिल लाटा, जब गोविंद परम पौ फाटा, साध संग विरला को पाए, नानक ताके बल बल जाए, आराम नाम मन तन आधारा, जो सिमरे तिसका निस्तारा रहाओ, मितया वस्त सत कर मानी, हित लायो सठ मूड अज्ञानी।

माया माध मन तन संग जाता तृष्णना बूझे करत कलोला ऊणी आस मिथ्या सा बोला आपत अकेला जात अकेला हम तुम संग झूठे सा बोला पाए ठगौरी आप भुलायो नानक कीर्तना जाए मिटायो पस पंखी भूत अर प्रेता बहुबत जोनी फिरत अनेता जय जानो तय रहन न पावे थान बिहून उठ उठ फिर तावे मन तन बासना बहुत विस्तारा अहंग मेव मूठो बेचारा अनक दोह अर बहुत सजाई ताकि कीमत कहन न जाई।

दीनानाथ जगत पित माया प्रभ दयाल दुख दर्द बिदारण जिस पावे तिस ही निस्तारण अंधकूप ते काढ़न हारा प्रेम भगत होवत निस्तारा साध रूप अपना तन धारिया महा अगन ते आप उबारिया जब तब संजम इस ते किश नाही आद अंत प्रभ अगम अगाही।

गुरपूरे सावास है काटे मन पीरा लाला गोला तनी को क्या कहो वडियाई है भाणे बक्से पूरा तनी सच कार कमाइए विछड़िया को मेल लय गुर को बर जाइए लाले गोले मत खरी गुर की मत निकी ताती सुरत सुहावनी मानमुख मत फीकी मन तन तेरा तू प्रभु सज तीरक तुरकी सचे बैसन उठना सच भोजन भाख्या चित सचे वितो सचा साचा रहचाख्या साचे घर साचे रखे गुर बचन सुपाख्या मनमुख आलस घणो फाथे उजाड़ी पाथा चुगे न चोगड़ी लाग बंद बिगाड़ी गुर प्रसादी मुक्त होए साचे ने ताड़ी अनहत लाला विद्या प्रभगेत प्यारी बिन साचे जियो जल बलो झूठे वेकारी बाद कारा सब छोड़िया साची तरतारी जिन्नी नाम सारिया

रघाव ते गुण विसर गए अपराधी। मैं बौरा क्या करो हरे, तू दाता दयाल सबे सेर, आहे निस दात सुमार करे। चार पदार्थ लय जग जन्मया, शिव शक्ति कर वास तरे। लागी पूख माया मुग जोग, मुग्द पदार्थ मोहे करे। कारण पलाव करे नहीं पावे, एत उद टूंडत थाग परे। काम क्रोध अंकार वे आपे, कूड़ कुटां से प्रीत करे। खावे पूगे सुन सुन देखे, पैर दिखावे काल करे। बिन गुरु शब्द न या पछाणे, बिन हर नाम ना काल टरे। जेता मोह में कर भूले, मेरी मेरी करते शीन करे। तान तन बिनस सह सह सहसा, फिर पछतावे मुख तूर परे। बिरद पया जोबन तन खिसिया, ताप कंठ बरुद्ध हो नैनो नीर टरे। चरण रहे कर कंपन लागे, साग त्राम न हृदय हरे। तुरत गई काली हूं तौले, इसे न पावे रखियो करे। विसरत नाम ऐसे दुख लाग है, जाम मार सुमारे नरक खरे। पूर्व जन्म को लेख न मिटई, जन्म मरे का को दोष तरे। बिन गुर बाद जीवन हो मरना, बिन गुर शब्दे जन्म जरे। खुशी खुआर पैरस भोगण, होगट कर्म विकार करे। नाम सार लोभ मूल खोयो, सिर धर्म राय का दंड परे। गुरमुख राम नाम गुण गावे, जा को हर पर नदर करे। ते निर्मल पुरख अपरंपर पूरे, ते जग में गुर गोविंद हरे। हर सिमरहो गुर भजन सुमारहो, संगत हर जन पाओ करे। हर जन गुर प्रधान द्वारे, नानक तीन जन की रेन हरे। एक ओंकार सदगुर प्रसाद।

आपे बख्श लाए सुख पाए, पूरे शब्द मिलाई है। दुर्मत झूठी बुरी बुरियार, औगुणयारी औगुणयार, कच्ची मत फीका मुख बोले, दुर्मत नाम न पाई है। औगुणयारी कंत न पावे, मन की झूठी झूठ कमावे, पिर का साओ न जाने मूर्ख, बिन गुर बूझ न पाई है। दुर्मत खोटी खोट कमावे, सीगार करे पिर खसम न पावे, गुणवंती सदा पिर रावे, सदगुर मेल मिलाई है।

कंचन काया गुरमुख बूझे, जिस अंतर नाम निवासी है। सच्चा चौका सुरत की कारा, हर नाम पूजन सच आधारा। सदा त्रिवत पवित्र है पावन, जित कड़ हर नाम निवासी है। हों तिन बलिहारी जो साचे लागे, हर गुण गावे अन दिन जागे। साचा सुख सदा तिन अंतर, रसना हर रस रासी है। हर नाम चेता अवर न पूजा, एको सेवी अवर न दूजा। पूरे गोर सब सच दिखाया, सच्चे नाम निवासी है। परम प्रजोनी फिर आया, आ भूला जा खसम भुलाया। हर जू मिले ता गुरमुख बूझे, तीने शब्द अविनाशी है। काम क्रोध भरे हम अपराधी, क्या मोल है बोले ना हम गुणना सेवा साधी। डुबदे पाथर मेल रहे हो तुम, आपे सात नाम अविनाशी है। ना कोई करे न करने जोगा, आपे करे करावे सो होएगा। आपे बगसले सुख पाए, सदगी नाम निवासी है। यो तन धरती शब्द बीज अपारा, हर साचे सेती वणज वापारा। सहतन जम्या तोट न आवे, अंतर नाम निवासी है। हर जीव अवगुण आरे नू गुण कीजे, आपे बख्स लहे नाम दीजे। गुरमुख होवे सो पद पाए, एकत नाम निवासी है। अंतर हर तान समझ न होई, गुर प्रसादी बूझे कोई। गुरमुख होवे सो तन पाए, सदगी नाम निवासी है। अन लवाओ परम पुलाई, माया मोहे सुध न काई। मानवक अंधे किशु न सूझे, गुरमत नाम परगासी है। मानमुख होमे माया सूते, अपना करना संभाले अंत विगूते। पर निंदा करे वो चिंता जाले, दुखे दुख निवासी है। आपे करते कार कराई, आपे गुरमुख दे बुझाई। नानक नाम रते मन निर्मल, नामे नाम निवासी है। मारू महला तीजा, एको सेवी सदा थिर साचा। दूजे लागा सब जा काचा, गुरमती सदा सच साला ही। साचे ही साच पतीजे हे, तेरे गुण बहुते मैं एक न जाता। आपे लाए लाए जग जीवन दाता, आपे बगसे दे वडियाई। गुरमत यो मन पीजे हे, माया लहर शब्द निवारी। यो मन निर्मल होमे मारी।

तोलाया, सेवक सेवह करे अरदास, तू आपे मेर बहाले पास, सबना जिया का सुखदाता, पूरे कर्म ते आया, जात सा संजम जे सच कमावे, यो मन निर्मल जे हर गुण गावे, इस बिख में अमृत प्राप्त होवे, हर जू मेरे पाया, जिसनु बुझाए सोई बूझे, हर गुण गावे अंदर सूझे, होमे मेरा ठाकर खाए, सहजे ही सद पाया, बिन कर्मा होर फिरे कनेरी, मर मर जम्मे चुके ना फेरी, बिख का राता बिख कमावे, सुख न कबहू पाया, बहुते पेख करे पेख तारी, बिन सबदे होमे कने ना मारी, जीवत मरे ता मुक्त पाए, सच्चे नाए समाया, अज्ञान तृष्णा इस तने जलाए, तेदी बूझे जे गुर शब्द कमाए, तन मन शीतल क्रोध निवारे, होमे मार समाया, सच्चा साहेब सच्ची वडियाई, गुर प्रसादी विरले पाई, नानक एक कहे बेनंती, नामे नाम समाया, मारू महला तीजा, नदरी भगतां लहो मिलाए, भगत सलाहन सदा लिवलाए, तौ सरनाई उभरे करते, आपे मेल मिलाया, पूरे शब्द भगत सुहाई, अंत सुख तेरे मन पाई, मंत्र सच्ची भगती राता, सच्चे स्यो चित लाया, होमे विच सजले शरीरा, कर्म होवे पेटे गुरपूरा, अंतर ज्ञान शब्द बुझाए, सदगुर ते सुख पाया, मनमुख अंधा अंध कमाए, बहु संकट जोनी परमाए, जम का जेवड़ा कदे ना काटे, अंते बहु दुख पाया, आमन जाना शब्द निवारे, सच नाम रखे उरथारे, गुर के शब्द मरे मन मारे, होमे जाए सुमाया, आमन जाने पर जब गोई, बिन सदगुर थिर कोई ना होई, अंतर ज्योत शब्द सुख वसया, ज्योति ज्योत मिलाया, पांच दूत चितवे विकारा, माया मोह का इहो पसारा, सदगुर सेवे ता मुक्त होवे, पांच दूत बस आया, बाज गुरु है मोह गुबारा, फिर डुबे वारो वारा, सदगुर भेटे सच दृढ़ाए, सच नाम मन पाया, साचा दर साचा दरबारा, सच्चे सेवे शब्द प्यारा, सच्ची तुन सच्चे गुण गावा, सच्चे माए सुमाया, करे अंदर को कर पाए, गुर के शब्द सहज सुभाए, ओथे सोग वियोग ना व्यापे, सहजे सहे सुमाया, दूजे पाए दुष्टां का वासा, पौंदे फिरे बहु मोह प्यासा, कुसंगत बह सदा दुख पावे, दुखो दुख कमाया, सदगुर बाजो संगत ना होई, बिन शब्दे पार न पाए कोई, तेजे गुण रवे दिन राती, ज्योति ज्योत मिलाया, काया बिरख पंखी विच वासा, अमृत चुगे गुर शब्द निवासा, उड़े ना मूले, ना आवे ना जाही, निरकर वासा पाया, काया शुद्धे शब्द विचारे, मोठ गौरी परम निवारे, आपे कृपा करे सुखदाता, आपे मेल मिलाया, सदगी नेड़े दूर न जानो, गुर के शब्द नजीक पछाणो, बिगसे कमल किरण परगस, प्रगट कर देखाया, आपे करता सच्चा सोई, आपे मार जीवाले अवर न कोई, नानक नाम मिले वडियाई, आप गवाए सुख पाया, मारू सोलहे महला चौथा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, सच्चा आप सवार नहारा, अवन सूस बीजी कारा, गुरमुख सच वसे कट अंतर, फेजे सच सुमाई हे, सबना सच वसे मन माही, गुर प्रसादी सहे सुमाही, गुर गुर करत सदा सुख पाया, गुर चरणी चित लाई हे, सदगुर है ज्ञान सदगुर है पूजा, सदगुर सेवी अवर ना दूजा, सदगुर ते नाम रतन तन पाया, सदगुर की सेवा पाई है, बिन सदगुर जो दूजे लागे, आवे जाए प्रमरे अपागे, नानक तिन की फिर गद होवे, जे गुरमुख रह शरणाई है,
ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੀਸਦਾ ਗੇ ਸਾਚੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗੂ ਨਾਮ ਅਜਾਚੀ। ਹੋ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਹਰ ਜੀਓ, ਰਖ ਲੈ ਵੋ ਗੁਰਸਰਣਾਈ ਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੋ ਆਇਆ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਆਇਆ, ਤੇ ਅਣਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜੇ ਤੁਨ ਬਾਣੀ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿ ਸੁਮਾਈ ਹੇ ਜਿਨ ਕੋ ਕਰਤੇ ਤੁਰ ਲਿਖ ਪਾਈ, ਅਨ ਦਿਨ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰਤ ਵਿਖਾਈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸੀਜੇ ਨਾਹੀ, ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਈ ਹੇ ਜਿਸ ਪਾਵੇ ਤਿਸੇ ਆਪੇ ਦੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਲੇ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਨਾਮ ਦੇਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਈ ਹੇ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟ ਪਇਆ, ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਸਹਿਜੇ ਲਇਆ, ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸਭ ਬਲ ਜਾਈ ਹੇ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸੂਰ ਨਿਸਮਿਟਿਆ ਅੰਧਿਆਰਾ, ਅਗਿਆਨ ਮਿਟਿਆ ਗੁਰ ਰਤਨ ਅਪਾਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਅਧਪਾਰੀ, ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਪਾਈ ਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟੀ ਹੈ ਸੋਏ, ਜੋ ਜੁਗ ਨਿਰਮਲ ਅਖਛਾ ਲੋਏ, ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਨਾਮ ਰਹਿਆ ਲਿਵ ਲਾਈ ਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਸਹਿਜੇ ਜਾਗੇ ਸਹਿਜੇ ਸੋਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਮਾਏ ਸਮਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਆਖ ਵਖਾਣੀ, ਹਰ ਹਰ ਕਰਤ ਸਦਾ ਮਨ ਬਿਗਸੈ, ਹਰ ਚਰਣੀ ਮਨ ਲਾਈ ਹੈ ਹਾਂ ਮੂਰਖ ਅਗਿਆਨ ਗਿਆਨ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸਮਝ ਪੜੀ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਹੋ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਹਰ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੈ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਤਾ ਤਿਨ ਏਕ ਪਛਾਤਾ, ਸਰਬੇ ਰਵ ਰਹੇ ਆ ਸੁਖਦਾਤਾ, ਆਤਮ ਚੀਨ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸੁਰਤ ਸਮਾਈ ਹੈ ਜਿਨ ਕੋ ਆਦਮੀ ਲਈ ਵਡਿਆਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਲਿਵਲਾਈ, ਆ ਮਿਲਿਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਅੰਕ ਸਮਾਈ ਹੈ ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਹਰ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਦਾ ਅਵਨਾਸੀ, ਸਰਬੇ ਰਵ ਰਹੇ ਆ ਕਟ

तेरी, बिनस गई हो मैं मत मेरी, अंगीकार किया प्रभ अपने, जग में शोभ सुहाई है, जय जय कार्य पो जगदीश, बल बल जाई प्रभ अपने ईस, इस बिन दूजा अवर न दीस, एका जगत सुबाई है, सत सत सत प्रभ जाता, गुर प्रसाद सदा मन राता, सेमर सेमर जीवे जन तेरे, एक अंकार समाई है, भगत जिना का प्रीतम प्यारा, सबे उदाहरण खजम हमारा, सिमर ना पुन्नी।

अगम गोचर कीमत नहीं पाई ता मिल गए जान लए मिलाई गुरमुख प्रगट पया तिन जन को जिन तुर मस्तक लेख लखाए दा तू आपे करता कारण करना सेठ पाए तरी सब तरना जन नानक शरण पया हर द्वारे हर भावे लाज रखाए दा मारू सोलह महला पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो दिसे सो एको तू है बाणी तेरी श्रवण सुनिए दूजी अवर न जा पसकाई।

तरी केश गोवर्धन तारी मुरली मनोहर हर रंगा मोहन माधव कृष्ण मोरारे जगदीश हर जीव असर संघारे जग जीवन अवनासी ठाकुर कड़कड़वासी है संगा तरणी तर ईश नरसिंह नारायण।

सुलेपनि एक तिल रंगा, एक जी गुण कमन बखाने, सहजपनि सिद्ध अंत न जाने, नवत नाम जपे दिन राती, ए गुणा ही प्रभ के संगा, ओढ़ गही जगत सरनाया, पय पयान जम दूध दुतर गए माया, हो कृपा इच्छा कर रखो, सा संतन के संग संगा, दृष्ट मान के सगल मथेना, एक मांगो दान गोविंद संतरेना, मस्तक लाए परम पद पावो, जे प्राप्त सो पावेगा, जिनको कृपा करी सुख दाते, तिन साधु चरण लय दे पराते, सगल नाम निधान तिन पाया, अनघा शब्द मन वाजंगा, किरतम नाम कथे तेरे जेबा, सत नाम तेरा परा पूर्वला, कहो नानक भगत पय शरणाई, दियो दर्श मन रंग लगा, तेरी गतमत तू है जान है, तू आपे कथे रह आप बखाने, नानक दास दासन को करियो, अर भावे दासा राज संगा, मारू मोहल्ला पंजवां, अल्ले अगम खुदाई बंदे, छोड़ ख्याल दुनिया के तंदे, होए पै खाक फकीर मुसाफर, यो दरवेश कबूल दारा, सच निवाज यकीन मुसल्ला, मनसा मार निवारो आसा, दे मसीत मन मौलाना।

तिनकी तूड़ मांगे मन मेरा, जिन विसरे नाही काहू बेरा। इनके संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का, साजन मीत प्यारा सोई। एक दृढ़ाए दुर्मत खोई, काम क्रोध अहंकार तजाए, ते जन को उपदेश निर्माल का, तुद बिन नाही कोई मेरा। गुर पकड़ाए प्रभु के पैरा, हों बलिहारी सदगुर पूरे, जिन खंडिया परम अनाल का, सास सास प्रा बिसरे नाही। आड़ पैर हर हर को त्याई, नानक संत तेरे रंग राते, तू समर्थ वडाल का। मारू महला पंजवां, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, चरण कमल हिरदे निधारी, गुरपूरा खिन खिन नमस्कारी। तान मन अर्प तई सब आगे, जग में नाम सुहावना, सो ठाकुर क्यो मनो विसारे, जियो पिंड दे सास सवारे। सास ग्रास समाले, करता कीता अपना पावना, जाते बिरता को नाही। आड़ पैर हर रख मन माही, साध संग पाच अचुत स्वामी, दरगे सोभा पावना। चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सह सुख नौ निध। सर्व कल्याण जे मन में चाह है, मिल साधु स्वामी रावणा। सात सिमरत वेद बखाणी, जन्म पदार्थ जीत पुराणी। ताम क्रोध निंदा पर हरिये, हरसना नानक गावना। जिस रूप ना रेखिया कुल नहीं जाती, पूर्ण पूर रहा दिन राती। जो जो जपे सो ही वड़ भागी, बौड़ ना जो नी पावना। जिसनु बिसरे पुरख बेदाता, जलता फिरे रहे निताता। अकिरत कणे को रखे ना कोई, नरक कोर में पावना। जियो प्राण तन तन जिन साजया, माद गर्भ में रख निवाजया। तेस्यो प्रीत शाट अनराता, काहू सिरे ना लावना। तार अनुग्रह स्वामी मेरे, कड़ कड़ वसे सबन के नेरे। हाथ हमारे कछुए नाही, जिस जनाए तिसे जनामना। जाके मस्तक तुर लिख पाया, तेसी पुरख न व्यापे माया। नानक दास सदा सरणाई, दूसर रवे ना लावना। आग्या दूसू सब कीने, अमृत नाम बिरले ही चीने। ताकि कीमत कहन न जाई, जड़ तद ओई समावना। तोई भगत सोई वड़दाता, तोई पूर्ण पुरख विधाता। बाल सहाई सोई तेरा।

चानन गुर मिले दुख बिगजा लीना ए पौड़ी माया वेख ना पुल तू मनमुख मूर्खा चलद्या नाल ना चलई सब झूठ दर्ब लखा अग्ञानी अंध ना बूझई सिर ऊपर जम खड़ग कलखा गुर प्रसादी उभरे

मरे दुख पावे, अंधे आपना पछाणनी, दूजे पज जावे, आत क्रोध से लूज दे, अगे पिछे दुख पावे, हर जीव अहंकार ना पावई, वेद कूप सुनावे, अहंकार मोए से

जग में राम नाम हर निर्मला उरमैला सब आकार नानक नाम ना चेतनी होए मैले मरे गवार। महला तीजा दुख लगा बिन सेवे है हुक्म ने दुख जाए आपे दाता सुखे दा आपे देश जाए। नानक एवै जानिए सब केश तिसे रजाए पौड़ी हर ना बिना जगत है निर्थान बिन नावे तृप्त नाही दूजे परम भुलाया होमे दुख पाही बिन कर्मा किशु ना पाईए जे बहुत लोचाही आवे जाए जम्मे मरे गुर शब्द छुटाही आप करे किसे आखिए दूजा को नाही। सलोक महला तीजा इस जग में संती तन खटेया जिन्ना सदगुर मिलया प्रवे आए सदगुर सच दृढ़ाया।

न जान ही दुर्जन सेती नेहो तू कै गुण हरंग मान ही महला पंजवा नानक जिस दिन कड़ी ना जीवना विसरे सरे ना बिंद तेस स्यों क्यों मन रूसी है जिसे हमारी चिंद महला पंजवा अरते रंग पार ब्रह्म कै मन तन अत गुलाल नानक विण नावे आलू दया जिती होर ख्याल पवड़ी हर जियो जा तू मेरा मित्र है ता क्या मैं काड़ा जिन्नी ठगी जग ठगया से तुद मार निवाड़ा गुर पौजल पार लंघाया जिता पावाड़ा गुरमती

मैं लख वड़ते साहिब जे बिंद बुलाइया, मैं चारे कुंडा पालिया तुद जे उड़ना साइया, मैं दस्यो मार्ग संतो क्यों प्रभु मलाइया, मन अर्प्यो हो मैं तजो इत पंथ जुलाइया, नित सेव्यो साहिब अपना सत संग मिलाइया, सबे आसा पूरिया गुरमैल बुलाइया, तुद जेवड़ होर ना सुझई मेरे मित्र गुसाइया।

कहत कबीर सुनो रे संतो, साध संगत तर जाएगा, अराग मारू बाणी रविदास जीओ की। एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद ऐसी लाल, तुझ बिन कौन करे गरीब निवाज गुसैया मेरा। माथे छदर तरे रखाओ, जाकी शोत जगत को लागे, ता पर तुही ठरे। नीचे ऊच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे। नाम देव कबीर तलोचन सदना सहन तरे, तय रविदास सुनो रे संतो, हर जी उते सवे सरे। मारू सुख सागर सुर तर चिंता मान, काम ते बज जाके रे। चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध, नवृद कर तल ताके, हर घ हर ना जब सरसना, अवर सब शाड बचन रचना रहाओ। नाना ख्यान पुराण वेद वेद, चौतीस अक्षर माघी, ब्यास विचार कहो परमार्थ, राम नाम सरनागी। सहज समाध उपात रहत होए, बड़े पाग लिव लागी, कहे रविदास उदास दास मत, जन्म मरण पै भागी। तुखारी संत महला पहला, बारे माहा एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद। तू सुन किरत करमा पुरब कमाया, सिर सिर सुख सुखमा देसो तू पल। हार जना तेरी कागत मेरी, हर बिन कड़ी ना जीवा, प्रेबाज दुहेली गोए ना बेली, गुरमुख अमृत पीवा। रचना राज रहे निरंकारी, ब्राह्मण कर्म सुकर्मा, नानक पंथ निगाले सातन। तू सुनया तमरामा बाबी गा प्रयो बोले, कोकल बाणिया सातन सबरस चोले। अंक सुमाणिया हर अंक सुमाणी, जा प्रा पाणी सास हुआ नारे। नव कर थाप महल कर ऊचो, निज कर वास मुरारे। सब तेरी तू मेरा प्रीतम, निस बसर रंग रावे। नानक प्रयो प्रोचवे बबीह, कोकल शब्द सुहावे। तू सुन हरस पिन्ने प्रीतम अपने, मन तन रब तरवन्ने। कड़ी ना बिसरे क्यों कड़ी बिसारी, हो बलिहारी हो जीवा गुण गाए। ना कोई मेरा हो किस केरा, हार बिन रहन ना जाए। ओड़ गई हर चरण निवासे, पए पवित्र शरीरा। नानक दृष्ट दीर्घ सुख पावे, गुरसबदी मन तीरा। बसे अमृत तार बूंद सुहावनी, साजिन मेरे सहज सुपाए। हर स्यो प्रीत बनी, हर मंदर आवे जा प्रा पावे। तन ऊबी गुण सारी, कर कर कंतर वे सुहागण। पौ क्यों कंतव सारी, पुन कंशाए बरस सुपाए। मन तन प्रेम सुखावे, नानक वरसे अमृत बाणी। कर कृपा कर आवे, चेत बसंत फला पावर सुहावड़े। बन फूले मंज बार, मैं फिर कर बहौड़े। फिर कर नहीं आवे तन क्यों सुख पावे। बिरे बरो तन छीजे, कोकल अंब सुहावी बोले। क्यों दुख अंक सहीजे, पावर भवंता फूली डाली। क्यों जीवा मर माए, नानक चेत सहज सुख पावे। जे हर वर कर तन पाए, वैसाख भला साखा वेश करे। तन देखे घर द्वार, आप हो दया करे। कर आओ प्यारे दुत्तर तारे, तुत बिन अड ना मोलो। कीमत कौन करे तुत पावा, देख दिखावे ठोलो। दूर न जाना अंतर माना, हरका महल पछाना। नानक वैसा की प्रपावे, सुरत शब्द मन माना। माहो जेड़ पला प्रीत क्यों बिसरे, थल तापे सर पार। सातन बिनो करे तन बिनो करेंदी, गुणसारेंदी गुणसारी प्रपावा। साचे महल रहे बैरागी, आवन देता आवा। निमाणी नितानी हर बिन, क्यों पावे सुख महली। नानक जिड़ जाने थी जैसी।

अमृत नाम रसन रस रसना गुर शब्दी रस पीजे विण नावे को संग न साथी आवे जाए कनेरी नानक लहा लय कर जाइए साची सच मत तेरी साजन देश विदेश।

जनते उपाय नित देवे चढ़े सो आया अपरंपरे आपे था पुथापे इस पावे सो होवे नानक हीरा हीरे विद्या गुण कह हार परोवे गुण गुणे समाने मस्तक नाम निशानु सा समाया चूका आमन जानु सच साच पछाता सच इराता साच मिले मन पावे साचे ऊपर अवर न दिसे साचे साच समावे मोहन मोहि लिया मन मेरा बंधन खोल निरारे नानक ज्योति ज्योत समाणी जा मिलिया अत प्यारे सज कर खोज लहे।

सुनो प्रीतम गुर शब्द मन समझाव तुखारी शांत महला चौथा एक ओंकार सदगुर प्रसाद अंतर प्री प्यार क्यों फिर बिन जीव गए राम जब लग दर्शन होए।

अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुर सबदी हौ सतगुर कै बलिहारीए। सतगुर आगे सीस पेट देओ जे सतगुर साचे पावे, आपे दया करो प्रदाते नानक अंक समावे। तुखारी महला चौथा हर हर अगम अगाध अपरम

गुरवाग सतगुरु जो पाए चले तिन हर हर आप मिलाया ज्योति ज्योत मिल जो तुसवाणी हर कृपा कर धरणी तरा हर हर अगम अगाध अपरंपर अपर परा तुम स्वामी अगम अथाह तू कट कट पूर रहया तू अलख अपेव अगम गुर सतगुर बचन लहया तन तन तेजन पुरख पूरे जिन गुर संत संगत मिल गुण रवे बवेक बुद्ध विचार गुरमुख।

सगुरु पिछे जिन हर घर नाम ते आया। गुरबचन मार्ग जो पंथ चाले तिन जम जागाती नेड़ न आया। सब गुरु गुरु जगत बोले गुर के नाए लये सब छुटक गया। द्वितीया जमन गए गोर हर घर जपन किया। तृतीया आए सुरसरी।

पुन होवे। गुर बचन नानक हर भगत लही, मिल आए नगर महाजना, गुर सदगुर ओट गही। तुखारी शांत महला पंजवा, एक ओंकार

प्राण हित चेता, प्राण सुख दाता गुरमुख जाता, सगल रंग बन आए सोई कर्म कमावे प्राणी, जेहा तू फुरमाए जा को कृपा करी जगदीसर, तेन साध संग मन जेता।

सदगुर प्रसाद बिसरत नाहे मन ते हरी आबे प्रीत महा प्रबल पई आन विखे जरी रघाओ बूंद का त्याग चातरक मीन रहत ना करी गुण गोपाल उच्चा रसना टेव ए परी महानाद कुरंक मोयो वेद तीखन सरी प्रचरण कमल रसाल नानक गांठ बांध थरी केदारा महला पनवा प्रीतम वस्त्रित मैं खो।

मोर, संत संग हर चरण बोहित, उदरते लय मोर, गर्भ कुंट मैं जने तारियो, नहीं बिखे बन मैं होर, हर सगत सरन सुमरत।

त्याग चलना सगल संपत काल सिर पर जान मिथन मोह दुरंत आसा झूठ सर परमान सत पुरख अकाल।

रूप रंग रहस नहीं साचा, क्यों छोड़े जम जालो, प्राणी हर जप जन्म गयो, साच शब्द बेन कहो ना छूड़स, बिरता जन्म पयो रखाओ, तन में काम क्रोध हो ममता, कठिन पीर अद फारी, गुरमुख राम जपो रस रसना, एन बेद तार तू तारी, बहरे करण अकल पई होची, साबद सहज नहीं बूझया, जन्म पदार्थ मन मुख हारिया, बिन गुर अंध न सूझया, रहे उदास आस निरासा, सहज ध्यान बैरागी, परमत नानक गुरमुख छूड़स, राम नाम लेव लागी, भैरों महला पहला, ढूंढी चाल चरण कर खिसरे।

मुन केते बिन शब्दे सुरत न पाई, त्रै गुण सबे रोग वे आपे ममता सुरत गवाई। एक आपे काड लए प्रभ आपे गुरसेवा प्रभ लाए, हर का नाम निधानु पाया सुख वसिया मन आए। चौथी पदवी गुरमुख वर्त है तेन निरकर वासा पाया, पूरे सदगुर कृपा कीनी विचों आप गवाया। एक की सिरकार एक जिन ब्रह्मा बिशन रुद्र उपाया, नानक नेचल साचा एकु ना ओ मरे ना जाया। पैरो मोहल्ला तीजा मानमुख दुबदा सदा है रोगी, रोगी सगल संसारा गुरमुख बूझे रोग गवावे। गुर शब्दी विचारा हर जियो

उजलै उबार खिनमय भयान रूप निक्षा थम उपाड़ अरणागस नहीं बिदारिया प्रहलाद लिया उबार संत जना के हर जियो कार्ज सवारे प्रहलाद जन के एक ही कुल उधारे गुर के शब्द होमे बिखमारे नानक राम नाम संत निस्तारे।

थी त गोविंद जन्मा सी परम भूले नर करत कचरायण जन्म मरण ते रहत नारायण रघाओ कर पंजीर खवायो चोर ओ जन्म न मरे रे साकत टोर सगल पराध देह लो रोनी सो मुख जलो जित कह ठाकुर जोनी जन्म न मरे न आवे ना जाए नानक का प्रव रहो सुमाए पैरो मोहल्ला पंजवा उठत सुखिया बैठ सुखिया पाओ नी लागे जा ऐसे बुजिया राखा एक हमारा स्वामी सगल कटा का अंतर जामी रगाओ तोय अचिंता जाग अचिंता जहां कहां प्रा तू वरसंता कर सुख वसया बार।

अरहो अराम रसायन नित उड़ पीवो हार हार हार हार रसना कहो अरहाओ कल युग में एक नाम उधार नानक बोले ब्रह्म विचार। पैरों महला पंजवा सतगुर सेव सर्व फल पाए जन्म जन्म की मैल मिटाए।

बिन अमरे कैसे राज मंडत, बिन बूझे कहां मन ठहराना, ना बिना सब जग बौराना, बिन बैराग कहां बैरागी, बिन हो त्याग कहां को त्यागी, बिन बस पंच कहां मन चूरे, ना बिना साध सड़गी चूरे।

बंद रह रती ना पावे, बिन सदगुर रोग तथे ना जावे। पार ब्रह्म जिस की नींद आया, बां पकड़ रोगों कट लाया। टूटे बंधन साथ संग पाया, कहो नानक गुर रोग मिटाया। भैरो महला पंजवां, ईत आवे ता महा आनंद। ईत आवे ता सब दुख पंज, ईत आवे ता श्रद्धा पूरी। ईत आवे ता कभे न चूरी, अंतर राम राय

भगत हमारी सबनी लोई, पिता हमारे प्रगटे माज, पिता पूत रल की नी सांझ, कहो नानक जो पिता पतीने, पिता पूत एक रंग लीने। भैरो मोहल्ला पंजवा, निर्वैर पुरख सतगुरु प्रदाते, हम अपराधी तुम बख्शाते, जिस पापी को मिले ना टोई, शरण आवे ता निर्मल होई, सुख पाया सतगुरु।

नाम हमारे सगल आचार, नाम हमारे निर्मल व्यवहार, जाक मन वसिया प्रभ एक, सगल जना की हर हर टेक, मन तन नानक हर गुण गाओ, साध संग जे दे वेनाओ, भैरो महला पंजवा, निर्तन कहो तुम देवो तना, अनक पाव जाहे निर्मल मना, सगल मनोरथ पूर्ण काम, भगत अपने को देवो नाम, सफल सेवा गोपाल राय, करन करामनगार स्वामी।

परवासा सगल त्याव है प्रभु गुणतासा। जब जब अंध करे तेरे दासा सिमर नानक साचे गुणतासा। पैरों मोहल्ला पंजवां।

आराम नाम रिद्ध दियो निवास सदा आनंद नाही किज सोग दुख दर्द न व्यापे रोग सब के तेरा तू करने हार पार ब्रह्म अगु अपार निर्मल शोभा अचरज बाणी पार ब्रह्म पूर्ण मन पानी जल थर महील रविया सोए नानक सब प्रवते होए भैरो महला पंजवा मन ताराता राम रंग चरणे सर्व मनोरथ पूर्ण करने आठ पैर गावत भगवंत सब गुर दीनो पूरा मंत सोवड़ भागी जिस नाम प्यार तिसके संग तरे संसार रहाओ सोई ज्ञानी जे सिमरे एक तो तनवंता जिस बुद्ध विवेक तो कुलवंता जे सिमरे स्वामी सो पतवंता जे आप शानी गुर प्रसाद परम पद पाया गुण गोपाल निरहिन ते आया टूटे बंधन पूर्ण आसा हर के चरण हृदमय निवासा कहो नांग जाके पूर्ण कर्मा सो जन आया प्रभु की सरना आप वित पाम सब कीने राम रसायन रसना चीने।

नाम जपत हर चरण निवास निर्विघ्न भगत पज हर हर नाओ रसक रसक हर के गुण गाओ हर हाओ हर सिमरत किस चाख ना जोह हर सिमरत दायत दियो ना पोह हर सिमरत मोह मान ना बधे हर सिमरत गर्भ जो ना रुद्ध हर सिमरन की सगली बेला हर सिमरन बो माए अकेला जात जात जपे जन कोए जो जापे इसकी गद होए हर का नाम जपिगे साध संग।

भगत करो जन शरण तुम्हारी, नाओ विर माया नाओ मेरे पूंजी, तुम्हें छोड़ जानो नहीं दूजी, नाओ मेरे बंधप नाओ मेरे पाई, नाओ मेरे संग अंत होए सगाई।

ओए अंगम प्रिंग माया में खापे, माया ऐसी मोहनी पाई, जेते जीते ते डकाई, अरहाओ पंखी मृग माया मैं राते, साकर माखी अद...

अरे आए ऐसा ज्ञान विचार मना हर की ना सिमरो दुख पंजना अहाओ जब लग सिंह रहे बन माहे तब लग बन फूले ही नाहे जब ही स्यार

रह पंकज मैं लियो निवास द्वादश दाल अब अंतर मंत जय पौड़ी श्री कमला कंत अर्ध उर्ध मुगला गोकाश ठुंड मंडल मैं कर परगास ऊगा सूरज।

विद्या कोट सबे गुण कहे तउ पार ब्रह्म का अंत न लहे बावन कोट जाके रुमावली रामन सयना जयते शली सहस कोट भो करत पुराण दुर्योधन का मथिया मान कंदर्व कोट जाके लवे ना तरे अंतर अंतर मनसा हरे कहे कबीर सुन सार्ग पान दे अपय पद मांगो दान भैरों बाणी नाम दियो जियो की कार पहला एक ओंकार सदगुर प्रसाद।

भगत जना को देवरा फिरे, भैरों नाम देव जियो, कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद जैसी भूखे प्रीत अनाज, त्रिखाबंद जल सेती काज, जैसी

रेठानी दुट सवा मेल मंत्र उपाया करसे औध कनेरी गिर तार जाल ज्वाला पै राख्यो राजा राम माया फेरी काड खड़ग काल पै कोप्यो मोए बताओ जो तुहे राख पीत पीतांबर तिर पवन तनी थंब माए हर पाखे हरनाग सृजन नखे बिदार्यो

गोपाल गंग जमन जो उल्टी बहे, तो नामा घर करता रहे साल कड़ी जा बीती सुनी, अजो न आयो तिर पवन तनी पाखंतन बाज बजायला, गरड़ चढ़े गोविंद आयला आप।

आग गुरमेल मिलावे करे दात गुरसुख प्यारे दिन सरात फल नाम प्राप्त गुर तुष दे कौ नानक पावे विरले के बसंत महला तीजा एक तुका साहिब पावे सेवक सेवा करे जीवित मरे

संत हंडोल तार दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद साल ग्राम बेप पूज मनावो सुकृत तुलसी माला आराम नाम जा बेड़ा बंद हो दया।

रह न सको दर्शन देखे बेन, सहज मिलो गुरमेल मिलाए अरहाओ, यो मन लोभी लोभ लुभाना, राम सार बौर पछताना, बिछिरत मिलाए गुर सेवरांगे, हर नाम दियो मस्तक उड़ पागे,

पावे, सदा सुख शरीर पाणे चित लावे, अपना प्रसेवे सहज सुपाए, नानक नाम से मन आए, बसंत महला तीजा, माया मोह शब्द जलाए, मन तन हरिया सतगुर पाए, सफलो बिरख हर के द्वार, साची बाणी नाम प्यार, ए मन हरिया।

पद खोए, साचा सेवो साची बाणी, नानक नामे साच सुवाणी। बसंत महला तीजा, बिन करमा त परम भुलाई, माया मोहे बहुत दुख पाई, मनुख अंधे ठौर न पाई। बिष्टा का कीड़ा बिष्टा माए सुमाई, हुकम मन्ने सो जन परवान, गुर के शब्द नाम निशान। अरहाओ साजर ते जिना तुर लिख पाया, हर का नाम सदा मन पाया, सतगुर की बाणी।

गुर सबदी हर चेत सुपाए, राम नाम रस रहे अघाए, कोड़ कुटंत्र के पाप जल जाहे, जीव तुम्हारे हर नाम समाहे, हर की दात हर जीव जाने, गुर के शब्द एहो मन मोलिया, हर गुण दाता नाम खाने रहाओ, भगवे वेश प्रा मुक्त न होए, बहु संजम सांत न पावे कोए, गुरमत नाम प्राप्त होए, वडभागी हर पावे सोए,

अरहाओ गुर प्रसाद लागे नाम स्वाद काहे जन्म गवाब हो वायरवाद पुर कृपा कीनी चूका अवमान सहज पाए पाया हर नाम उत्तम ऊंचा शब्द काम नानक वखाणे साच नाम बसंत महला तीजा बनसत मौली चढ़िया बसंत इव मन मोल्या सतगुरु संग तुम साज त्यावो मुद मना ता सुख पावो मेरे मना अरहाओ एत मन मौल्य पया आनंद अमृत फल पाया नाम गोविंद एक को एक तब आख बखाणे हुक्मे बूझे ता

सद बसंत गुर मिले देव बिरख जम्यो हुए पार जात फूल लगे फरतन पांत तृप्त अघाने हर गुणे गाए जन नानक हर हर हर त्याय बसंत महला पंजवा हटवाणी तन माल हाट कीत जुआरी जुवे माए चीत अमली जीवे अमल खाए त्यो हर जन जीवे हर त्याय अपने रंग सब को रचे जित प्रलाया तित तित लगे अरहाओ मेघ समय मोर निरतकार चंद देख

या की गत मित कही ना जाए, काट काट रया समाए, या के भगत आनंदमय, या के भगत को नाही खै, या के

साधु संगत गुरे बताई ऊहां जपिए केवल नाम। साधु संगत पार ग्राम सगल तत् में तत् ज्ञान। सर्व ध्यान में एक ध्यान हर कीर्तन में उत्तम तुना। नानक गुरमिल गाए गुना बसंत महला पंजवा। जिस बोलत मुख पवित होए जिस सिमरत निर्मल गए सोए जिस

तेरा दिया सब जंत खागे अंतरजामी प्रभ दयाल अपने दास को नदर निहाल कार कृपा मुझे देहो दान जब जीवे नानक तेरो नाम बसंत महला पंजवा आराम रंग सब गए पाप राम जबत कछ नहीं संताप गोविंद जबत सब मिटे अंधेर हार सिमरत कछ नागे फेर बसंत हमारे राम रंग संत जना सो सदा संग रहाओ संत जनी किया उपदेश जय गोविंद भगत सो तन देश हर भगत हीन उद्यान थान गुर प्रसाद खड़ खड़ पछान हर कीर्तन रस पूग रंग मन पाप करत तू सदा संग।

तुम मिलो प्रस भागे हर चेत मन मेरे अरहाओ सगन बाज कूले एक रह सूक कठूले बसंत रुत आई प्रफूलता रहे अब करू आयो रे एक नाम बोवहो बोवहो अनरूत नाही नाही

एकत्र मेरो मेरे भाई दुविधा दूर करो लिवलाए हर नामे के होवो जोड़ी गुरमुख बैसो सफा विछाए इन बिद पासा ढल हो वीर गुरमुख नाम जपो दिन राती अंत काल न लागे पीर रगाओ कर्म धर्म तुम चौपड़ साजो सत करो तुम सारी काम क्रोध लोभ मोह जीतो ऐसी खेल घर प्यारी उठ स्नान करो प्रभाते सोए घर आराधे बिखड़े दाओ लंघावे मेरा सदगुर सुख सहज सेती कर जाते हर आपे खेले आपे देखे हर आपे रचन रचाया जन नान गुरमुख जो नर खेले सो जिन बाजी कर आया बसंत महला पंजवा हिंडोल तेरी कुदरत तू है जान है और ना दूजा जान है जिसनु कृपा करे मेरे प्यारे सोई तुदे पछाण तेरिया भगतां कौ बलिहारा थान सो आवसदा प्रो तेरा रंग तेरे आपारा रहाओ तेरी सेवा तुते होवे और ना दूजा करता भगत तेरा सोई तुद पावे जिसनु तू रंग धरता तू वरदाता तू वरदाना और नहीं को दूजा तू समर्थ स्वामी मेरा हाँ क्या जाना तेरी पूजा तेरा मैल अगोचर मेरे प्यारे विघम तेरा है पाना कहो नानक तय पया द्वारे रख ले वो मुगद अजाना बसंत हिंडोल महला पंजवा मूल ना बूझे आप न सूझे परम व्यापी अहं मनी पिता पार ब्रह्म प्राप्त हनी मुए निस्तारो निर्गुणी रहाओ ओपत परलो प्रवत

काम रखाओ यो जग तुए का पहार ते साचा मान्या के विचार तन दारा संपद ग्रहे संग न चाले समझ ले एक भगत नारायण होए संग कौ नानक पाइते एक रंग बसंत महला नामा कां पुल्यो रे झूठे लोभ लाग कज बिगड़ो नाहन अज हो जाग रखाओ सब सुपने कै यो जग जान बिन से शिन में साची मान संग तेरे हर बस्त नीत निज बासर पजतागे मीत बार अंत की होए सहाए कहो नानक गुणता के गाए बसंत महला पहला अष्टपदिया कार पहला दो तुकिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद जग

ना पण सज दोत सवार प्रयो सेवो प्रप्रेम आधार गुर शब्दी बिगत्यास निवार मोहन मोह लिया मन मोहे गुर के शब्द पछाना तोहे नानक ठाडे चाह है प्रभु द्वार तेरे नाम संतोखे कृपा तार बसंत महला।

मन पूलो समझस साच नाए, गुरु शब्द विचारे सहज पाए रहाओ। मन पूलो परमस पावरतार, बिल बिरथे चाहे बहु विकार, मैगल जो फासस कामहार, कड़ बंधन बाध्य।

एक नराल अकथ कहानी एको शब्द सच्चा निशान पूरे गुरते जाने जान एको धर्म दृढ़ सच कोई गुरमत पूरा जुग जुग सोई अनहद राता एक लिवतार ओ गुरमुख पावे अलख अपार।

लाज जिन जिन सेव्या अंत बार रे मन सेव तू परे पार तन्ने सेव्या बार बुद्ध तिरलोचन गुरमिल पई सिद्ध।

दू सुग बांधव संसार मन उदरण का साज नाहे पाबंदन नित पौत जागे ईट मीत को सखा नाहे आ बीज आपे ही खावे जाके तीने होत बेकार ते छोड़ चलिया खिन मैं गवार माया मोह मोह भरमिया किरतरे कर करमिया करने हाँ।

एक दिवस मन पई उमंग घास चंदन चोआ बहु सुगंध पूजन चाली ब्रह्म ठाए तो ब्रह्म बतायो गुर मन ही माघ जहां जाएगे तै जल पखान तू पूर रहो है सब समान वेद पुराण सब देखे जोए ऊहां तो जाइए।

आओ इन वेद हर मिलिगे वर कामन तन सोहाग प्यारी जाद बरन कोल सहसा चूका गुरमत शब्द बिचारी जिस मन माने

प्रीत कुटुंब संबंधी माया मोह पसारी जिस अंतर प्रीत राम रस नाही दुविधा कर्म बेकारी अंतर रतन पदार्थ हित कौ दुरै ना लाल प्यारी नानक गुरमुख नाम अमोलक जुग जुग अंतर तारी सारंग महला चौथा कार पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर के संत जना की हम तूर मेल सतसंगत परम पद पाया आत्म राम रहया पर पूर रघाओ सतगुर संत मिले संत पाईए।

करत रहत निरहारी, तेन जन की सेवा थाए पई, जिनको किरपाल होवत बनवारी, हर के हो संत भले ते उत्तम भगत भले, जो पावत हर राम मुरारी, जिनका अंग करे मेरा स्वामी, तिनकी नानक घर पैज सवारी। सारग मोहल्ला चौथा पड़ताल, जप मन गोविंद हर गोविंद, गुणी निदान ससृढ़ का प्रभु, मेरे मन हर बोल हर पुरख अविनाशी रघाओ, हर का नाम अमृत हर हर हरे, सो पिए जिस राम प्यासी, हर आप दयाल दया कर मिले, जिस सदगुरु सो जन हर हर अमृत नाम चखासी, जो जन सेव है ससदा मेरा हर घरे, इनका सब दुख परम पौ जासी, जन नानक नाम लए ता जीव है, ज्यो चातक जल पिए त्रिवतासी। सारग मल्ला चौथा जप मान श्री राम, राम रमत राम सत सत राम, बोलो पैया सद राम राम, राम रव रहा सरबगे रघाओ, राम आपे आप आपे सब करता, राम आपे आप आप सप्त जगे, जिस आप कृपा करे मेरा राम राम राम राय, सो जन राम नाम लिव लागे, राम नाम की उपमा देखो हर संत हो, जो भक्त जना की पत राखे, वेत्य कलयुग अगे, जन नानक का अंग की

रोग सोग तेरे मिटे सगल अग, निम खिये हर नाम ते आए अरहाओ, छोड़ सियानप बोच तराई, साधु सरणी जाए पाए, जो होए कृपाल दीन दुख पंजन, जमते होवे तरमराए, एक सबेन नाही को दूजा, आन बियो लवे लाए, माग पिता भाई नानक को, सुखदाता हर प्राण साए, सारग महला पंजवा।

सुख सार समागम कोड बैकुंठे पाए रघाव दुलाभ दे जब होत पुनीता जंग की त्रास निवारे महापत्ते पातक उतरे हर नामा उर तारे जो जो सुने राम जस निर्मल ताका जन्म मरण दुख नासा को नानक पाईगे वडपागी मन तन हुए बेगासा सारग महला पंजवा दो पदे कर चौथा एक ओंकार सदगुर प्रसाद मोहन कर आवहो करो जुदरिया मान करो अब महाने बोलो पूल चूक तेरी प्रेत्रिया रघाओ निकट सुनो अर पेखो नाही परम परम दुख परिया होए कृपाल गुर लाए पार दो मिलो लाल मन हरिया एक निमक जे बिसरे स्वामी जानो कोट दिस लख बरिया साध संत की पीर जो पाई तो नानक हर संग मिरिया सारग महला पनवा अब क्या सोचो सोच बिसारी करना सा सोई कर रहा देह नाओ बलिहारी रखाओ चौ दिस फूल रही बिखिया बिख गुर मंत्र मूख गरड़ारी आदे राख्यो करे अपना ज्यो जल कमला अलपारी हाओ नाही किस मैं क्या हुसा तब तुम ही कल तारी नानक पाग प्रयोगर पाछे राग संत सदकारी सारग महला पंजवा अब मोहे सर्प पा बिरकाते करण कारण समरत स्वामी हर एक स्ते मेरी गाते रघाओ देखे नाना रूप हो रंगा अन नाही तुम पाते दे आधार सर्व को ठाकुर जी प्राण सुख दाते प्रम तो हार जो परे हो तो गुरमिल चरण पराते कहो नानक मैं सर्व सुख पाया ए सुख बेगा नहीं राते सारग महला पंजवा अब मोहे लभ दे है घर टेका गुरदयाल पय सुखदाई अंधले मानक देखा रघाओ काटे अज्ञान तिमर निर्मलिया बुद्ध विगास बवेका ज्यो जल तरंग फेन जल हुई है सेक ठाकुर पय एका जय ते उठ्यो तय ही आयो सभी एक एका नानक दृष्ट आयो सब ठाई प्राण पति घर समका सारग महला पंजवा मेरा मान एक ही प्रेमांग पेह आयो सब थान देश प्रे रोम न समसर लाग रहाओ मैं नीरे अनक भोजन बहु बिंजन पेसो दिष्ट न करे रुचांग हरस चाहे प्रे प्रेम कुटेर ज्यो आल कमला लोभांग गुण निधान मनमोहन लालन सुखदाई सरबांग गुरु नानक प्रापाए पठायो मिलो सखा गल लाग सारग महला पंजवा आप मोरो ठाकुर स्यो मन माना साद कृपाल दयाल पय है यो छेद्यो दुष्ट बिगाना रघाओ तुम ही सुंदर तुम सियाने तुम ही सुगर सुजाना सगल जोर अर ज्ञान ध्यान एक निमकन कीमत जाना तुम ही नायक तुम्हें शत्रपात तुम पूर रहे भगवाना पावो दान संत सेवा हर नानक सद कुरबाना।

छूटते गुर की सुहागन, हर पायो सुगड़ सुजानी। जे कर में बैसन नहीं पावत, सो थान मिलो बासानी। उनके बस आयो भगत बच्छल, जिन राखी आन संतानी। कहो नानक हर संग मन मानिया, तब चूकी कान लुकानी। सारग महला पंजवा अब मेरो, पंचा ते संग टूटा। दर्शन देख पए मन आनंद, गुर कृपा ते छूटा रखाओ। बेखम थान बहुत बहुत तरिया, अनक राख छू रूटा। बेखम गार कर पहुंचे नाही, संत सांत पै लूठा। बहुत खजाने मेरे पाले परिया, अमोल लाल आखूटा। जन नानक प्रभु कृपा तारी, तौ मन में हारस कूटा। सारग महला पंजवा आप मेरो, ठाकुर स्यो मन लीना। प्राण दान गुर पूरे दिया, उरजायो ज्यो जरमीना। रखाओ काम क्रोध लोभ मद मस्तर, ए अर्प सगल दान कीना। मंत्र दरड़ाए हर औखद गुर दीनो, तो मिलो सगल पर बीना। गृह तेरा तू ठाकुर मेरा, गुर हो खोई प्रभु दीना। कहो नानक मैं सहज कर पाया, हर भगत भंडार खजीना। सारग महला पंजवा मोहन सब जी तेरे तू तार है, छुट्टे संघार निमक कृपा ते। कोट ब्रह्मंड उधार है रघाओ, करे अरदास बहुत बेनंती। निमक निमक सा महार है, हो कृपाल दीन दुख पंजन। हा दे निस्तार क्या ए पूपत बपरे कही है, कहो ए किसनू मार है। राख राख राख सुख दाते, सब नानक जगत तुमारे। सारग महला पंजवा आप मोहे, तन पायो हर नामा। पय अचिंत तृष्ण सा बुझी है, त्यो लिखियो लेख मथामा। रखाओ खोजत खोजत पयो बैरागी, फिर आयो दे गिरामा। गुर कृपाल सौदा इो जोरियो, हथ चिरियो लाल अगामा। आन बापार बंज जो करिए, तेते दुग सहमा। गोविंद भजन के निरपय वापारी, हरास नानक राम नामा। सारग महला पंजवा मेरे मान, निष्ठ लगे प्रे बोला। गुर पां पगर प्रसे वालाए, सदयाल हर टोला। रघाओ प्रभु तू ठाकुर सरप्रद पालक, मुए कलत्तर सहित सब गोला। मान तान सब तू है तू है, एक नाम तेरा मैं ओला। ये तख्त बैसल है तो दास तुम्हारे, कस बढ़ावे केतक भोला। जन नानक के प्रापुरख बिधाते, मेरे ठाकुर अगे अतोला। सारग महला पंजवा रसना राम, कैत गुण सोहं। एक निमक उपाय समावे, देख चरत मन मोहं। रघाओ जिस सुने मन होए रहस अत, हृदय मान दुख जोहं। सुख पायो दुख दूर परायो, बन आई प्रभु तोहं। केलव गए मन निर्मल होई गए, गुर काढे माया द्रोहं। कहो नानक मैं सो प्रापाया, करण कारण समर्थोहं। सारग महला पंजवा नैनो देखो चलत तुमासा, सबहु दूर सबहु ते नेरे। आगम आगम कटवासा, रहाओ अपूल ना पूले। लिखियो ना चलावे, मता ना करे पचासा। खिन में सा सुवार बिनाहे, भगत वशल गुण तासा। अंध कूप में दीप बले हो, गुरदे कियो परगासा। कहो नानक दर्श पेग सुख पाया, ता पूर्ण होई आसा। सारग महला पंजवा चरणे गोविंद मार्ग सुहावा। आन मार्ग जेता जिताइए, तेतो ही दुखवावा। रखाओ नेत्र पुनीत पय दर्श पेखे, हस्त पुनीत तहलावा। हृदय पुनीत हृदय घर बस्यो, मस्त पुनीत संत तूरावा। सर्बन दान नाम हर हर कहे, जिस कर्म लिखिया तिन पावा। जन नानक कौ गुर पूरा पेट्यो, सुख सहजे अनंद बिहावा। सारग महला पंजवा त्यायो अंत बार, नाम सखा। जे माल पिता सु भाई ना पहुंचे, तहां तहां तू रखा। रहाओ
ਅੰਧ ਕੂਪ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਤਿਨ ਸਿਮਰਿਓ ਜਦੋਂ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾ ਖੁੱਲੇ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਦਿਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪੀਆ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ ਆਗਾਹੇ ਰਸਨ ਚਖਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਲਾਹੀ ਸਗਲ ਤਿਖਾ ਸਾਰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰ ਮਿਲ ਐਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਆਇਆ ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਦਿਆਲ ਦੁਖ ਪੰਜਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤਾਤੀ ਬਾਇਆ ਅਰਹਾਓ ਜੇਤੇ ਸਾਸ ਸਾਸ ਹਮ ਲੇਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਨਿਮਖ ਨਾ ਵਿਸ਼ਰੇ ਕਰ

कहो नानक मैं अतुल सुख पाया, जन्म मरण पय लाते, सारग महला पंजवां अरे मूड़े आन कहे कत जाई, संग मनोहर अमृत है रे बोल बोल बिख खाई रखाओ, प्रभ सुंदर चतर अनूप विधाते।

लाज संग संग बसरिया तुम गंभीर तीर उपकारी हम क्या बपरे जंतरिया गुर कृपाल नानखर मिलियो तो मेरी सूख सेजरिया सारग महला पंजवा मन ओए दिनस तन परवाना सबल ते करी संयोग सुहावे सदगुर संग ज्ञाना रखाओ तन सुभाग तन सुहागा तन दिल जिन माना यो मन तुमरा सब गृह तन तुमरा हियो कियो कुर्बाना कोट लाख राज सुख पाए एक निमक पेख दिष्टाना जो कहो मुखो सेव के बैसिए तुख नारग अंत न जाना सारग महला पंजवा आप मोरो सहसा दुख गया और उपाव सगल त्याग छोड़े सदगुर शरण पया अरहाओ सर्व सिद्ध कार्य सब सबरे अंग रोग सगल की खया और पराध खिन में खो पई है गुर मिल हर हर कया पंच दास गुर वसगत कीने मन नेचल निरपया आए ना जावे ना कद ही डोले फिर नानक परा जया सारग महला पंजवा प्रभ मेरो एक उत सदा सहाई मन मोर मेरे जी को प्यारो कमन कहां गुण गाई रहाओ खेल खिलाए लाड लाड आवे सदा सदा आनंदाई प्रतपाले बारग की न्याई जैसे मात पिताई तिस बिन निमख नहीं रह सकिए बिसर न कब हो जाई कहो नानक मेल संत संगत ते मगन पै लिवलाई सारग महला पंजवा अपना मीत स्वामी गाइये आस न अवर कहू की कीजे सुखदाता प्रत्याये रखाओ सुख मंगल कल्याण जिसे घर तिस की सरणी पाइये तिसे त्याग मानक जो सेव है तो लाज लोन हो जाइये एक ओट पकरी ठाकुर की गुर मिल मत बुद पाइये गुण निधान नांग

गुलाल लाडले सहज सहज गुण गायो रगाओ गुरबचनात कृपाद कृपा ते बौर नकत हूं तायो रेत उपाद समासु आसन भगत वशल ग्रे पायो नाल विनोद कोड आनंदा सहज सहज सुमायो करना आप करामन आपे कहो नानक आप आयो सारग महला पंजवा अमृत नाम मने आधारो जिन दिया तिसके कुर्बाने गुरपूरे नमस्कारो रघाओ बूझी तृष्णा सहज सुहेला काम क्रोध बिख जारो आए न जाए बसे जे ठार जे आसन रंकारो एके प्रगट एके गुप्ता एके तुंदुकारो आद मद अंत प्रसोई।

दिवस चार के दिसे संगी ऊहा नाही जय पारी तिन स्यो राच माच हित लायो जो काम नहीं गावारी हौ नाही नाही किश मेरा ना हमरो बसचारी करन करावन नानके प्रभ तंतर संग उधारी सारग महला पंजवा मोहनी मोहत रहे न होरी साधक सिद्ध सगल।

कैल न चोरी, अंधकूप में पतत होत जग, संतो करो परम गद मोरी। साध संगत नानक पयो मुक्ता, दर्शन पेखत पोरी।

निर्वैर संग वैर रचावे हर दरगे ओहारे आद जुगात प्रभु की वड्याई जन की पैज सवारे निरपो पय सगल पो मिटिया चरण कमल आधारे गुर के बचन जप्यो नाओ नान प्रगट पयो संसार सारग मुहला पंजवा हर जन छोड़िया सगला आप ज्यो जानो त्यों रखो गुसाई पेख जीवा प्रताप रखाओ गुर उपदेश साध की संगत बिन सो सगल संताप मित्र सत्तर पेग समत बिचार्यो सगल सुंपाखन जाप तरत बुझी शीतल आगाने सुन अनहद विस

जाके सूद परोए जनता तिस प्रभु का जस गाव हो। सिमर ठाकुर जिन सब कुछ दीना आन कहां पे जाओ, सबल सेवा स्वामी मेरे की मन बांच।

दुख नाठे सुख सहज समाए, आनंद अनंत गुण गाया, बां पगर कढ़ लीने अपने, गृह अंधकूप ते माया। कहो नानक गुर बंधन काटे, बिशरत आन मिलाया, सारग महला पंजवा, हर के नाम की गद ठांडी, वेद पुराण सिमर साधु जन, खोजत खोजत कांडी रहाओ, शिव ब्रांच अर इंद्र लोक, तामे जल तो फिरिया, सिमर सिमर स्वामी पैसी तल, दुख दर्द प्रभ गिरिया, जो जो तरयो पुरातन नवतन, भगत पाए हर देवा, नानक की बेनंती प्रभ जियो, मिले संत जन सेवा, सारग महला पंजवा, जेवे अमृत गुण हर गाओ, हर हर बोल कथा सुन हर की, उचरो प्रभ को नाओ रगाओ, राम नाम रतन तन संचो, मन तन लाभो पावो, आन विभूत मिथ्या कर मानो, साचा ए सुवाओ, जी प्राण मुक्त को दाता, एक सस्यों लिवलाओ, कहो नानक ताकी सरनाई, देत सगल अपयाओ, सारग महला पंजवा, होती नहीं कमन कछ करनी, ए ओढ़ पाई मिल संत, गोपाल एक की सरणी रगाओ, पांच दोख शिद्र या तरम है, बिखे ब्याध की करनी, आस अपार दिनस गण राखे, ग्रस्त जात बल जरणी, अनाथे नाथ दयाल सुख सागर, सर्व दुख पय हरणी, मन बांछित चितवत नानक दास।

छोड़ो कपट होए निरवैरा तो प्रभ संग निहारे सचतन वणजो सचतनक संचो कबू न आवो हारे खात खर्चत किश निखुटत नाही अगन

ठाकुर सब थाई निकट बसे सब नेरे रगाव बंधन तोर राम लिवलाई संत संग बने आई जन्म पदार्थ पयो पुनीता इच्छा सगल पुजाई जाको कृपा करो प्रा मेरे तो हर का जस गावे आठ पैर गोविंद गुण गावे जन नानक सद बल जावे।

पंडित तो सूरा सोदाना, साध संग जिन हर घर जप्यो नानक सो परवाना। सारग मोहल्ला पंजवा, हर घर संत जिना की जीवन, दिखे रस भोग अमृत सुख सागर, राम नाम रस पीवन रखाओ। संचन राम नाम तन रतना, मन तन पीतर सीमन, हर रंग रंग पए मन लाला, राम नाम रस खीवन। जो मीना जल से उर जानो, राम नाम संग लीवन। नानक संत चातर्क की न्याई, हर बूंद पान सुख थीवन।

पीर सब हुट्यो साध गयो तत घाट रहाओ अनास रियान उधरले पुखे माया गईया हाट तेल भग करत करत पछतावे कभू न साके शांत निंदक जमदूती आए संगारेओ देवे मूंड ऊपर मटाक नानक आपन कटारी आपस को लाई मन अपना की नू फाट सारग मोहल्ला पंजवा टूटी निंदक की अद बीच जनका राखा आप स्वामी बेमुख को आए पहुंची मीच रहाओ उसका कहया कोई न सुनई कई

दर्शन पेख मेरा मन मोयो, दुर्मत जात बही रघाओ, अगे अगाध ऊच अबनासी, कीमत जात ना कही। जल थल पेख पेख मन बिकस्यो, पूर रहो सर्व मही, दीन दयाल प्रीतम मन मोहन, मेरे साधे कीनो सही। सेमर सेमर जीवत हर नानक, जम की पीर न फही, सारग मोहल्ला पनवा मायरी, मन मेरो मतवारो। पेख दयाल अंध सुख पूरन, हर रस रप्यो खुमारो रघाव, निर्मल पै उजल जस गावत, बौर न होवत कारो। चरण कम से डोरी राची, भेट्यो पुरख अपारो, कर गए लीने सर्बस दीने, दीपक पयो उजारो। नानक नाम रसक बैरागी, उले समूहा तारो। तारग महला पंजवा मायरी, आन सिमर मर जाहे, प्या गोविंद जीन को दाता, माया संग लपटाहे रघाओ। नाम सार चले अन मार्ग, नरक कोर में पाहे, अनक सजाई गणतन आवे, गर्भ गर्भ परमाहे, से तनवंते से पतवंते।

काम क्रोध निंदा पर हरिय काढे साधु के संगमार। जन्म पदार्थ गुरमुख जीतया बौर न जुए हार। आठ पैर प्रभु के गुण गावे

और जोन ना पाए, पय कृपाल दयाल गोविंद पया साधु संग, हर चरण रास नानक पाई लगा प्रभ सो रंग, सारग मोहल्ला।

मोह मद मातो सिमरत ना गे हरे रगाओ, साध संग जपते नारायण तिनके दुख जरे, सबल दे तन ओए जन्मे प्रभ के संग रले, चार पदार्थ अष्ट दिशा सिद्ध सब ऊपर साध पले, नानक दास तूर जन बांचे उदरे लाग पले, सारग महला पंजवा।

बेअंत पार ब्रह्म स्वामी कर तेरी जाए न लाखी। चरण कमल प्रीत मन विद्या कर सर्वस अंतर राखी। वेद पुराण सिमरत साधु जान।

परा पूर्व जिसे लिखया बिरला पाए कोए, रावण गो गोपाल करते नानका सजोए। सारग मोहल्ला पंजवा, हर के नाम की मत सार, हर विसार जो आन रचे मिथन सब विस्तार रगाओ। साध संगम बज स्वामी पाप होवत खार, किरनार बिन बसाए हिरदे बौर जन्म ना मार।

प्रीत लाए हर ध्याए गुण गोबिंद सदा गाए हर जन की रेन बांश दयनगार स्वामी सर्व कुशल सुख विश्राम आन दा आनंद नाम जम की कछ नाहे त्रास तिमर अंतर जामी एक शरण गोविंद चरण संसार सगल ताप हरण नाभ रूप साध संग नानक पार ग्रामी सारग महला पंजवा गुण लाल गावो गुर देखे पंचा ते एक छूटा जो साध संग पगराओ रखाओ दृष्टो का संग न जाए मान त्याग मोहा एक घर प्रीत लाए मिल साध संग सोहा पायो है रे गुण दान सगल आस पूरी नानक मन आनंद पये गुर बिखम गार तोरी सारग मोहल्ला पंजवा मन बैरागेगी खोजती दरसार रगाओ साधु संतन सेवक प्रो हीरे त्यायो आनंद रूपी पेख कै हो महल पावोगी काम करी सब त्याग कै हो शरण परोगी नानक स्वामी घर मिले हो गुरमनावोगी सारग मोहल्ला पंजवा ऐसी होए परी जानते दयार रगाओ मातर पितर त्याग कै मन संतन पाए बेचायो जात जन्म कुल खोइए हों गावो हर हरी लोक कुटुंब ते टूटिए प्रभ किरत किरत करी गुरमुखो उपदिसया नानक सेव एक हरी सारग महला पंजवा लाल लाल मोहन गोपाल तू कीड हस्त पाखान जंत सर्व में प्रतपाल तू रहाओ ने दूर पूर हजूर संग सुंदर रसाल तू ने बर्न बर्न ने कुले कुल नान प्रभ कृपाल तू सारग महला पंजवा करत केल बिखे मेल चंद्र सूर मोहे उपजता विकार दुंदर नौपरी चुनंत कार सुंदर अनेक पाओ करत फिरत बिन गोपाल तोहे रगाओ तीन पौने लपटाए रही काज कर्म ना जात सही उन मत अंध तंद रचत जैसे महासागर होहे उदरे हर संत दास काड दीनी जमकी फास पतत पावन नाम जाको सिमर नानक ओहे एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद राग सारंग महला नामा हर बिन तेरो को ना सगाई कां की माल पिता सुध बनता को काहू को पाई रगाओ तन धरणी पर संपत सगरी जो मान्यो अपनाई तन छूटे का संग न चाले कहां ताए लपटाई दीन दयाल सदा दुख भंजन तस रुचना बढ़ाई नानक कहत जगत सा मिथया ज्यो सुपना रहे नाई सारंग महला नामा कहां मन बिखिया स्यों लपटाही या जग में कू रहन न पावे एक आवे एक जाही रहाओ कां को तन तान संपद का की का स्यो निहो लगाई जो दिसे सो सगल बिनासे ज्यो बादर की शाही तज अवमान शरण संतन गहो मुक्त होए शिन माही जन नानक भगवंत भजन बिन सुख सुपने पी नाही सारंग महला नामा कहा नर अपनो जन्म गवावे माया माद बिखे रस रचियो आराम सन नहीं आवे रगाओ यो संसार सगल के सुपनो देख कहां लोभावे जो उपजे सो सगल बिना से रहन न को उपावे मितया तान साचो कर मान्यो

मोहन मोह लिया मन मोर, बड़े पाग लिव लागी। साज विचार केलब दो काटे, मन निर्मल अनरागी। गहर गंभीर सागर रतनागर, अवर नहीं अन पूजा। शब्द विचार परम पौ पंजन, अवर न जान्या दूजा। मनुआ मार निर्मल पचीनिया, हर सरते अदकाई। एक से बन में अवर न जाना, सदगुर बूझ बुझाई। अगम अगोचर अनाथ अजोनी, गुरमत एको जानिया। तुबर परे नाही चित डोले, मन ही ते मन मानिया। गुर प्रसादी।

ओ पंजन गुरमुख एको डीठा रगाव कोड कुटंतर के पाप बिनासन हर साचा मन पाया हर बिन अवर न सूजे दूजा सतगुर एक बुझाया प्रेम पदार्थ जिन कड़ वस्या सहजे रहे सुमाई शब्दर तेसे रंग चिरूले राते सहज सुपाई रसना शब्द विचार हराती लाल पई रंग लाई आराम नाम ने केवल जानिया मन तृप्त्या सांत आई पंडित पढ़ पढ़ मुनि सब थके परम पेघ थके पेघ तारी गुर प्रसाद निरंजन पाया साचे शब्द विचारी आवा गौण निवार सच राते साच शब्द मन पाया सतगुर सेव सदा सुख पाएगे जिन विचो आप गवाया साचे शब्द सहतन उपजे मन साचे लिवलाई अगमे गोचर नाम निरंजन गुरमुख मन वसाई एक समय सब जगतो वर्त विरला एक पछाणे शब्द मरे ता सब के सूजे अनदिन एको जाने जिसनू नदर करे सोई जन बूझे होर कहना कथन ना जाई नानक नाम रते सदा बैरागी एक शब्द लिवलाई सारग मला तीजा मन मेरे हर की अकथ कहानी हरंदर करे सोई जन पाए गुरमुख विरले जानी रखाओ हर गैर गंभीर गुणी गहीर गुर के शब्द पछानिया बहुविध कर्म करे पाए दूजे बिन शब्दे बहुरानिया हर नाम नावे सोई जन निर्मल फिर मैला मूल न होई ना बिना सब जग है मैला दूजे परम पद खोई क्या दृढ़ा क्या संग्रह त्यागी मैं ता बूझ न पाई होए दयाल कृपा कर हर जियो नम होए सकाई सच्चा सदाता कर्म विदाता जिस पावे थे ना ए लाए।

आख ना जापे आख पौड़ी, नाए सुने अमन रहसी है नामे साते आई, नाए सुने अमन तृप्ति है सब दुख गवाई, नाए सुने ना उपजे नामे वडे आई, नामे ही सब जात पात नामे गल पाई, गुरमुख नाम ते आई है नानक लिव लाई, सलोक महला पहला झूठ ना रागी झूठ ना वेदी, झूठ ना चंद सूरज की पेदी, झूठ ना अन्नी झूठ ना नाई, झूठ ना मीहो वरे सब थाई, झूठ ना धरती झूठ ना पानी, झूठ ना पौने माए समाणी,

जत होए ब्राह्मण चुली संतोख की गिरही का सतदान राजे चुली ने आव की पढ़िया सच ध्यान पानी चेतना तो पई मुख पीतै तिख जाए पानी पिता जगत का फिर पानी सब खाए पौड़ी नाए सुने सब सिद्ध है रिद पिछे आवे नाए सुने नौनद मिले मन चिंदिया पावे नाए सुने संतोख होए कवला चरण त्यावे नाए सुने सहज उपजे सहजे सुख पावे गुरमति नाव पाईए नानक गुण गावे श्लोक महला पहला दुख ज जमन दुख मरण दुख वर्तन संसार दुख दुख अगे आखिए पढ़ पढ़ करे पुकार दुखियां पंडा खुलियां सुख ना निकले हो कोए दुख जियो जलाया दुखिया चलिया रोए नानक सिवती रत्या मन तन हरिया होए दुख की अग्गी मारिए पी दुख दारू होए महला पहला नानक दुनिया पस रंग पशु हू पस खेहे पसो पस कमावनी पी पस परिये देह जा जियो विच्चों कड़िये पशु पर आ जाए अगे लेखा मंगे होर दसूनी पाए पौड़ी नाए सुने सुज संजम जम नेड़ न आवे नाए सुने कड़ चानना आरेर गुवावे नाए सुने आप बुझिए लाहा नाओ पावे नाए सुने पाप कटिए निर्मल सच पावे नानक नाए सुने मुख उजले नाओ गुरमुख त्यावे श्लोक महला पहला कर नारायण सभा नाल।

प्रीत होवे लख जीवन, क्या खुशियां क्या चाओ, विछड़िया विसोए विछोड़ा, एक कड़ी मैं जाए जे सो वरिया, मिठा खाजे पी फिर कौड़ा खाए, मिठा खादा चेतन आवे कौड़ा तन ताए जाए, मिठा कौड़ा दोवे रोग, नानक अंत विगुते भोग, चग चग चखना झगड़ा चाख, चग चग जाए।

आपे सृष्ट उपायन आप करे विचार नानक किसनु आखिए सब वरते आप सत्यार महला तीजा हर गुरमुख तिनी आराध्या जिन कर्म प्राप्त होए नानक हो बलिहारी तिन कौ जिन हर मनवस्या सोए पौड़ी आस करे सब लोक बहु जीवन जानिया नित जीवन कौ चित गढ़ मंडप सवारिया वल वंच कर उपाव

लोभ लहर सुध मत गई, सच न लगे प्यार, गुरमुख जिना शब्द मन वसै दर गए मोह द्वार। नानक आपे मेल लय, आपे बख्शन हार, महला चौथा, नानक जिस बिन घड़ी ना जीवना, विसरे सरय ना बिंद, तिस ज्यों क्यों मन रूसी है, जिस हमारी चिंद। महला चौथा, सावन आया चिमचिमा, हर गुरमुख नाम ते आए, दुख पुख काड़ा सब चुकाए सी, मी हो मुठा शैबर लाए, सब तरत पई हरियावली, आन जम्या बोहल लाए, हर अचिंत बुलावे कृपा कर, हर आपे पावे ताए, हर किसे ते आवो संत जनो, जो अंते लए छिड़ाए, हर कीर्त भगत आनंद है, सदा सुख वसे मन आए, जिन्ना गुरमुख

कहां नार गर्भस थोरी बात, मंद नाज टका चार गांठी, आइडो टेडो जात रखाओ, बहुत प्रताप गांव सो पाए, दो लख टका बरात, दिस चार की करो साहिबी, जैसे बनघर पात, ना को ले आयो यो तन, ना को ले जात, रावण हूं ते अलक शत्र पा, हर के संत सदा सिर पूजो, जो हर नाम जपात, जिन को कृपा करत है गोविंद, ते सत्संग मिलात, मात पिता बंता सुत संपत, अंत न चलत संगात, कहे कबीर आराम पज बौरे, जन्म

माया कारण श्रम अत करै, सो माया ले गाडे तरे, आत संचय समझे नहीं मूड, तान तरती तन होए गयो तूड़, काम क्रोध तृष्णा अत जरे, साध संगत कबहू नहीं करे, कहत नाम जो ताचियान, निरपय होए पजिए भगवान, बदो कीना होड़ माधो मोस्यों, ठाकुर ते जान, जानते ठाकुर, खेल परे है तो स्यों रखाओ, आपन देव देवरा आपन, आप लगावे पूजा, जल ते तरंग, तरंग ते है जाल।

निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह पंग गुर प्रसाद खाना पीना हसना सोना विसर गया गए मरना खसम विसार खुवारी कीनी।

जियां अंदर जियो तुही, गुरमुख त्यावे से अमृत पावे, से ही सूचे हो ही। आहिरस नाम जपोरे प्राणी, मैले खच्चे हो ही। जेही रुत काया सुख तेह, तेहो जेही देही। नानक रुत सुहावी साई, बिरनावे रुत केही। मलार महला पहला।

पूरे गुर की ओट गही, नानक राम नाम जप गुरमुख, तन सुहागण सच सही। मलार महला पहला, साची सुरत नाम ने तृप्ते, होमे करत गवाया, पर तान पर नारी रत निंदा, बिख खाई दुख पाया। शब्द चीन पै कपट न छूटे, मान मुख माया माया, अजगर पारल दे अदपारी, मर जन्मे जन्म गवाया, मन भावे शब्द सुहाया।

जिन हर प्रभ आन मिलाया रहाओ। नौ तन प्रीत सदा ठाकुर स्यों, आन दिन भगत सुहावी। मुक्त पए गुरदर्श दिखाया, जो जोग भगत सुपावी। हम थारे तिर पावन जग तुमरा, तू मेरा हूं तेरा। सतगुर मिलया निरंजन पाया, बहोर ना पव जल फेरा। अपने पिर घर देख विगासी, तौ तन साज सीगारो। अकुल निरंजन स्यों सच साची, गुरमत नाम आधारो। मुक्त पई बंधन गुर खोले, साबद

मन की बिद सतगुर ते जाने अन दिन लागे साधे घर स्यों ध्यान गुर शब्द रते सदा बैरागी हर दर के साची पावे मान यो मन खेले हुक्म का बद एक खिन मैं दह दिस फिर आवे जां आपे नदर करे हर प्रभ साचा ता यो मन गुरमुख तत्काल वस आवे इस मन की बेद मन हूं जाने बूझे शब्द विचार नानक नाम ते

माया मोह अज्ञान गुबार, मनमुख मोहे मुग्ध गवार, अनदिन तंदा करत विहाए, मर मर जम्मे मिले सजाए, गुरमुख आराम नाम लिवलाई, कूड़े लालच ना लपटाई, जो किश होवे सहज सुपहाए, हर्ष पीवे रसन रसाए।

न पाए। यो विछोड़ा सहया ना जाए, सतगुर मिले ता मिले सो पाए। नामहीन बिनसे दुख पाए, तृष्णा जलिया भूख न जाए। बिन भागा नाम न पाया जाए, बहुविध थाका कर्म कमाए। त्रै गुण बाणी वेद विचार, विख्या मैल विख्या वापार। मार जन्मे फिर होए खुवार, गुरमुख तुरिया गुण उर तार। गुर माने माने सब कोए, गुर बचनी मन शीतल होए। चौ जुग सोभा निर्मल जन सोए, नानक गुरमुख विरला कोए। राग मलार महला चौथा, कार पहला चौपदे एक ओंकार।

सगुर देख मेरा मन बिकस्यो जन घर पेट्यो बनवारी जगाओ जिन ऐसा नाम सारिया मेरा हर घर तिसके कुल लागी गारी हर तिसके कुल प्रसूत न करियो तिस विधवा कर्म है तारी हर घर आन मिलावो गुर साधु जिस अहिंस हर उर तारी गुर डीठे गुर का सिख बिकसै ज्यों बारक देख महतारी।

आओ। अनक प्रकार भोजन बहु किए, बहु व्यंजन मिसटाए, करी पाक साल सोच पवित्रा, हुण लाभ हो पूघर राय, दुष्ट बिदारे साजन रहसे, ए मंदर कर अपनाए। जौ गृह लाल रंगी यो आया, तौ में सब सुख पाए, संत सभा ओट गुर पूरे, पुरमस्तक लेख लिखाए। जन नानक कंत रंगीला पाया, फिर दुख न लागे आए, मलार मोहल्ला पंजवा, खीर आधार बारक जब होता, बिन खीरे रहन न जाई। सार संभाल माता मुख नीर, तापो तृप्त अघाई, हम बारक पिता प्रवदाता, फूले बारक अनक लख बरिया, अनठौर नाही जय जाता रहाओ। चंचल मत बारक बपरे की,

मन बां छे सो लैसी पिता किरपाल आग्या ए दीनी बारक मुख मांगे सो देना नानक बारक दर्श प्रभ चाह है मोहे हिरदे बसे नित चरना मलार महला पंजवा छगर विधि जोर आहार करया तजो सगल अंदेसा कार्ज सगल आरंभ्यो करका ठाकुर का पारोसा सुनिए बाजे बाज सुहावी भोर पया मैं प्रेम मुख पेखे गृह

हम एक गिरत बिन रह ना सको, प्रीत हमारी लागी रहाओ। उनके संग मुए प्रवचित आवे, संत प्रसाद मुए जागी। तुन उपदेश पए मन निर्मल, गुण गाए रंग रंगी। इयो मन देख किए संत मीता, किरपाल पए बड़भागी। महासो पाया बन ना सको, रेन नानक जन पागी। मलार महला पंजवा, माई मोहे प्रीतम देहु मिलाई। सगल सहेली सुख पर सूती,

राजा राम रमत सुख पायो, बरस मेघ सुखदाई रहाओ। एक पाल बिसरत नहीं सुख सागर, नाम नवे निद पाई। उदाउद पयो पूर्ण भावी को, पेटे संत सहाई। सुख उपजे दुख सगल बिनासे, पार ब्रह्म लिवलाई। तरयो संसार कठिन पै सागर,

तेरे आनंद मंगल सुख पाया रखाओ। मिटे कलेस त्रिसन सा बूझी पार ब्रह्मन त्याया। साध संग जन्म मरण मारे बौर न कतहु ताया। मन तन नाम निरंजन रातो चरण कमल लिवलाया। अंगीकार कियो प्रभु अपने नानक दास शरणाया। मलार मुहल्ला पंजवा बिशरत क्यों जीवे ओए जीवन। चिते उलास आस मिलबे

सेवक पूर्ण भगत चेरानो रहाओ। ए त्योत डोल डोल शरम पायो, तान तान होत बेरानो। लोग दोराए करत ठगियाई, होतो संग न जानो। मृग पंखी मीन दीन नीच, ए संकट फिर आनो। कहो नानक पान प्रवता रहो, साध संगत सुख मानो। मलार महला पंजवां,

मन मोयो हर पंख लगाए मलीजै रहाओ खोजत खोजत मार्ग पायो साधु सेव करीजै तार अनुग्रह स्वामी मेरे नाम महारस पीजे त्राहे त्राहे कर सरणी आए जल तो कृपा कीजै कर गै लिओ दास अपने कहो नानक अपनो कीजै मलार महला पंजवा प्रभु को भगत बछल बिरदायो निंदक मार चरण तर दीने अपनो जस वरतायो रहाओ जय जयकार कीनो सब जग में दया जीवन में पायो कंठ लाए अपनो दास राखियो ताती वाओ न लायो अंगीकार कियो मेरे स्वामी प्रांपो मेट सुखायो मां आनंद करो दास हर के नानक विश्वास मन आयो।

पंजवां पड़ताल कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुर मनार प्रे दयार स्यो रंग किया।

होए आनंद सगल भाग रहाओ। संत संगे मन परफड़े मिल मेघ तर सुहाग। कान कोर प्रीत मोर चित चातरक बूंद ओर। ऐसो हर संगे मन मोह त्याग माया तोहो। मिल

किरण आकाशी बिकसे सहज सुपाई प्रीतमा प्रीत बनी अब ऐसी ज्योति ज्योत मिलाई यात्रक जल बिन प्रयो प्रयो टेर बिलब करे बिललाई कानहार कोर दसो दस बरस बिन जल प्यास न जाई मीन निवास उपजे जल गीते सुख दुख पुरब कमाई खेन तेल रहे न

मन माही। गारड़ गुर ज्ञान ध्यान गुर बचनी, बिखिया गुरमत जारी। मन तन हेम पय सज पाया, हर की भगत निरारी। जेती है तेती तुद जाचे, तू सर्ब जिया दयाला। तुमरी सरण परे पद राखो, साच मिले गोपाला। बादी तंद अंध नहीं सूझे, बदक कर्म कमावे। सदगुर मिले ता सूझस बूझस, सच मन ज्ञान समावे। निर्गुण दे

प्यारे बिन एक खे न रह ना सको, बिन मिले नींद ना पाई, पेर नजीक ना बूझे बपड़ी, सतगुर दिया दिखाई। सहज मिलिया तब ही सुख पाया, तृष्णा शब्द बुझाई। कहो नानक तुझते मन मानिया, कीमत कहन ना जाई। मलार महला पहला, अष्टपदियां।

मन रे सतगुर सेव समाए, वडे पा गुर पूरा पाया, हर हर नाम त्याए रहाओ, हर अपने भाणे सृष्ट उपाई, हर आपे दे आधार, हर अपने भाणे मन निर्मल किया, हर स्यों लागा प्यार, हर के भाणे सतगुर पेटिया, सब जन्म सवारण हार, वाह वाह बाणी सत है गुरमुख बूझै कोए, वाह वाह कर प्रसाल आई है तेस जेवड अवर न कोए, आपे बगसे मेल लय कर्म प्राप्त होए, साचा साहेब मारो सतगुर दिया दिखाए, अमृत वरसै मन संतोखिए सच रहे लिवलाए, हर के नाए सदा हरियावली फिर सुके ना कुमलाए, बिन सतगुर किने ना पायो मन वेखो को पतियाए, हर कृपा ते सतगुर पाइए भेटे सहज सुपाए, मानमुख परम भुलाया बिन पागा हर तन ना पाए, त्रै गुण सबा तात है पढ़ पढ़ करे विचार, मुक्त कदे ना होवई न पाएन मोह द्वार, बिन सतगुर बंधन ना टुट ही नाम न लगे प्यार, पढ़ पढ़ पंडित मुनि थके वेदा का अभ्यास, हर नाम चेतना आवई न निज कर होवै वास, जमकाल सिरो ना उतरै अंतर कपट विनाश, हर नावे नू सब को प्रताप दा विण भागा पाया ना जाए, नदर करे गुर पेटिए हर नाम वसे मन आए, नानक नामे ही पत उपजे हर सोरहां समाए, मलार महला तीजा अष्टपदी कार दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर हर कृपा करे गुर की कारे लाए, दुख पल्लर हर नाम साए, साची गत साचे चित लाए, गुर की बाणी शब्द सुनाए, मन मेरे हर हर सेव निधान, गुर कृपा ते हर तन पाइए अन दिन लागे।

पूजा लाया। दस अवतारी राम राजा आया, दैता मारे ताए हुक्म सवाया। ईस महेश्वर सेव तिनी अंत ना पाया, सच्ची कीमत पाए तख्त रचाया। दुनिया तंदे लाए आप छपाया, कर्म कराए कर्म तुरों फरमाया। श्लोक महला दूजा, सावन आया हे सखी,

तिन कामणी जिन कंते सो मन भंग पौड़ी दोवे तरफा उपाय एक वरत्या वेद बाणी वरताए अंदर वाद कत्या।

मोती शब्द सूर है, काम क्रोध जिनी मारिया, सच्चे अंदर महल शब्द सुवारिया, छे भगत तुद पाम दे सच्चे नाए प्यारिया, सतगुर सेवन अपना बिना विटो हो वारिया। सलोक महला तीजा, ऊनव आया वरसे लाए चढ़ी, नानक पाने चले कंत कै तो माने सदा रली। महला तीजा, क्या उठ उठ देखो बपने इस मेघे हथ किशनाहे, जिन यो मेघ पठाया तिस राखो मन माहे, तिस नू मन वसाए सी जाको नदर करे, नानक नदरी बारी सब करण पला करे पौड़ी। तो हरसदा सरेवी है जे करतन लागे वार, आडाणे आकाश कर खिन में टाए उसारण हार, आपे जगतो पाए कै कुदरत करे विचार। मन अगे लेखा मंगिए बहुती होवे मार, गुरमुख पासों लेखा निबड़े बगसे सिबत भंडार, ओथे हथ ना अपड़े ऊक ना सुनिए पुकार, ओथे सतगुर बेली होवे काढ ले अंती वार। इना जनता नू होर सेवा नहीं सतगुर सिर करतार।

पौड़ी। सच्चा सतगुर सेव सच संभालिया, अंत खलोआ आए ते सतगुर अगे कालिया। होय न सके जमकाल सच्चा रखवालिया, गुरसाखी जोत जगाए दीवा बालिया।

सच्चे शब्द निहा लिया, नानक नाम निदान है पूरे गुरदे खा लिया। सलोक महला तीजा वाह भी है हुगम पछाणिया, गुर कै सहज सुपाए मेघ वरसते दया कर, गूढ़ी शैबर लाए बाबी के कूक पुकार रह गई, सुख वस्या मन आए नानक सो साल आई है जे देंदा सबना जिया रिजक समाए। महला तीजा चातरक तू ना जान ही क्या तुद विच तिखा है, किल पीते तिख जाए दूजे पाए परमया, अमृत जल पल्ले ना पाए नदर करे जे अपनी ना सतगुर मिले सुपाए। नानक सतगुर ते अमृत जल पाया सहजे रहा सुमाए, पौड़ी एक वाणखण बैसे जाए साधना देव ही, एक पाला ककर पन्न शीतल जल हेव ही, एक पसम चिड़ावे अंग मैल ना तोव ही, एक जटा बिगट बिगराल कोल कर खोव ही, एक नगर फिरे दिन रात नींद ना सोवही, एक अगन जलावे अंग आप विगोवही, विणनावे तन शार या कै रोवही, सोहन खसम द्वार जे सदगुर सेवही।

अंधे का नाव पारखू, एवे करे गुवाओ, इल्त का नाव चौधरी, कूड़ी पूरे थाओ, नानक गुरमुख जानिए, कल का यो नियाओ मोहल्ला पहला, हरणा बाजा तै सिकदारा, इना पढ़िया नाओ, फांदी लगी जात पहायन, अगे ना ही ताओ, सो पढ़िया सो पंडित बिना, जिनी कमाना नाओ, पहलों दे जड़ अंदर जमे, ता उपर होवे शाओ, हराज सी मुकदम कुत्ते, जाए जगायन बैठे सुते, चाकर नहंदा पायन काओ, रात पेत कुत्ते हो चट जाओ।

की सार ना जाननी, तृष्णा जलते करे पुकार। नानक नावे ही ते सुख पाया, गुरमति उर धार।

रूप जात जोबन पंजे ठग एनी ठगी जग ठगया किने न रखी लज ए ना ठगन ठग से जे गुर की पैरी पाहे नानक करमा बारे होर केते मुठे जाहे पौड़ी।

सकल मन गोर न माने, मन कमीन कम तरीन तू दरिया ओ खुदाया। एक चीज मुझे देहे आवर जहर चीज ना पाया, पुराब खाम कूजे हिकमत खुदाया। मन तुआना तू कुदरती आया, सगनानक दीबान मस्ताना निध चढ़े सवाया।

प्रतहार तो ऐसा राजा श्री गोपाल जांचे कार गान गंधर्व रिखी बपड़े टाडिया गावंत आछे सर्व शास्त्र बहुरूपिया

पल जाओ। कल युग मैं पाया जिन नाव, कानड़ा मोहल्ला पंजवां, कीर्त प्रभु की गाओ मेरी रसना, अनक बार कर बंदन संतन, ऊहां चरण गोविंद जी के बसना रहाओ, अनक पान कर द्वार न पावो, होए किरपाल ता हर हर त्यावो, कोड़ कर्म कर दे न सोदा, साध संगत मैं मन पर बोधा, तृष्ण ना बूझी बहु रंग माया, नाम लैत सर्व सुख पाया, पार ब्रह्म जप पए दयाल, कहो नानक तो छूटे जंजाल, कानड़ा मोहल्ला पंजवा, ऐसी मांग गोबिंद ते, तैर संतन की संग साधु का, हर नामा जप परम गते रखाओ, पूजा चरना ठाकुर सरना, तोई कुसल जो प्रभु जी उपकरना, सबल होते दुर्लभ देही, जा को सदगुर मया करेही, अज्ञान परम बिन से दुख डेरा, जाके हृदय बसे गुर पैरा।

आवत जात रहे श्रम नासे सिमरत साधु संग पतत पुनीत होए खिन पीतर पार ब्रह्म कै रंग जो जो कथै सुने हर कीर्तन ताकि दुर्मत नास सगल मनोरथ पावे नान पूर्ण होवे आस तानड़ा मोहल्ला पंजवां साध संगत निधर को नाम संग सहाई जी के काम रखाओ संतरेन नित मज्जन करे जन्म जन्म के किल बिख हरे संत जना की ऊंची बानी सिमर सिमर तरे नानक प्राणी कानड़ा मोहल्ला पंजवां साधु हर हरे गुण गाए मान तन तन प्राण प्रभ के सिमरत दुख जाए रखाओ ई पूत कहां लोभ आवे एक स्यो मन लाए महा पवित्र संत आसन मिल संग गोविंद त्याय सगल त्याग शरण आयो नानक लेहु मिलाए कानड़ा मोहल्ला पंजवां पेख पेग बिसाओ साजन प्रभ अपना एकांत रखाओ आन दा सुख सहज मूर्त तिस आन नाही भांत सिमरत एक बार हर हर मिट कोट कसमल जांत गुण रवंत दुख नस है रिद पय अंत सांत अमृता रस पीओ रसना नानक हर अंग रात कानड़ा मोहल्ला पंजवां साजना संत आओ मेरे रहाओ आनदा गुण गाए मंगल कसमला मिट जाए परेर संत चरण तरो माथ चांदना गृह हुए अंधेर संत प्रसाद कमल बिकस गोविंद भजो पेख नेर प्रभ कृपा ते संत पाए वार वार नानक ओ बेर कानड़ा मोहल्ला पंजवां चरण शरण गोपाल तेरी मोह मान तो परम राख लीजे काट बेरी रखाओ बूढ़त संसार सागर उदरे हर सिमर रतनागर शीतला हर नाम तेरा पूर्णो ठाकुर प्रा मेरा दीन दर्द निवार तारन हर कृपा निध पतत उदारन कोड़ जन्म दुख कर पायो सुखी नानक गुरु नाम दृढ़ायो कानड़ा मोहल्ला पंजवां तन ओ प्रीत चरण संग लागी कोड़ जावता सुख पाए आए मिले पूर्ण बड़भागी रहाओ मुए अनाथ दाह जन तेरा अबर ओट सगली मुए त्यागी होर परम काटे प्रसिमरत ज्ञान अंजन मिल सोवत जागी तू अथाहो अद बड़ो स्वामी कृपा सिंध पूर्ण रतनागी नानक जाचक हर हर नाम मांगे मस्तक आन तरयो प्रापागी कानड़ा मोहल्ला पंजवां कुचल कठोर कपट कामी ज्यों जाने त्यों तार स्वामी रखाओ तू समरथ सरण योग तू राखे अपनी कल तार जाप ताप नेम सुसंजम नाही इन विदे छुटकार गर्त कोर अंध ते कड हो प्रभ नानक नदर निहार कानड़ा मोहल्ला पंजवां कार चौथा एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद।

तरह करताग करना मैं अंतरजामी ज्ञान आड़ पैर नानक जस गावे मांगन कौ हरदान कानड़ा मोहल्ला पंजवा कैन कहामन कौ कई केत ऐसो जन बिरलोग है सेवक जो तत योग कौ बेत रहाओ दुख नाही सब सुख ही है रे एक एकी नेत बुरा नहीं सब पला ही है रे हार नहीं सब जेत सोग नाही सदा हर की है रे छोड़ नहीं किश लेत कहो नानक जान हर हर हर है।

आनंद रंग विनोद हमारे, नामो गावन नाम ते आवन, नाम हमारे प्राण आधार है। हरहाओ नामो ज्ञान नाम इसनाना, हर नाम हमारे कार्य सवार है। हर नामो शोभा नाम बढ़ाई, पाव जल विखम नाम हर तार है। अगम पदार्थ लाल अमोला,

पराशित दर्शन पेट मिटायो पयो परगास अंध उजियारा सहज समाज समायो कौन कहे तुम ते कछ नाही तुम समरथ अथायो किरपा निधान रंग रूप रस नाम नानक लै लायो कानड़ा मोहला पंजवा बूढ़त प्राणी हर जब तीर बिनसे मोह परम दुख पीर अरहाओ सिमरो दिन रैन गुर के चरना जत कद पेखो तुमरी सरना संत प्रसाद हर के गुण गाया गुर पेटत नानक सुख पाया कानड़ा मोहला पंजवा सिमरत नाम मने सुख पाई है साध जना मिल हर जस गाई है रखाओ कार किरपा प्रभु दे बसेरो चरण संतन के माथा मेरो पार ब्रह्म को सिमरो मना गुरमुख नानक हर जस सुना कानड़ा मोहला पंजवा मेरे मन प्रीत चरण प्रापरसन रसना हर हर पूजन तृप्तानी अखियां कौ संतोख प्रदर्शन रखाओ करनन पूरयो जस प्रीतम कारमल दोख सगल मल हरसन पामन तामन स्वामी सुख पंथा अंग संग काया संत सरसन सरन गई पूर्ण अबनासी आन उपाव थकत नहीं करसन कर गए लिए नानक जन अपने अंध कोर सागर नहीं मरसन कानड़ा मोहला पंजवा ओ कत कपट खपट खल गरजत मरजत मीच अनक बरिया अरहाओ अंग मत अनरत कोमित हित प्रीतम पेखत प्रमत लाह गरिया अनित व्यवहार अचार विधहीनत मम मद मात कोप जरिया करण किरपाल गोपाल दीन बंद नानक उधर सरन परिया कानड़ा मोहला पंजवा जी प्राण मान दाता हर बिसरते ही हान रहाओ गोविंद त्याग आन लाग गए अमृत उडार भूम पाग गए बिखे रस्यो आसक्त मूड़े ताहे सुख मान काम क्रोध लोभ व्यापेओ जन्म ही की खान पातत पावन शरण आयो।

संतना हर संतना की रेन कियो अर्प देन प्रभ पय है किरपेन मान वो त्याग छोड़े हो।

संगा आठ निग्रह अतरैत बिटंगा हौ रोग व्यापे चुके न पंगा काम क्रोध आत त्रिसन जरंगा सो मुक्त नानक जिस सतगुर चंगा कानड़ा महला पंजवा कार सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तिख बूझ गई गई मेरे साध जना पंच भागे चोर सहज सखनो हरे गुण गावती गावती गावती दर्श प्यार रगाओ जैसी करी प्रामोस्यों मोस्यों ऐसी हो कैसे करो यो तुम्हारे बल बले बल बले बल गई पहले पै संत पाए त्याए त्याए प्रीत लाए प्रवतान तेरो केरो जित जंतन कर विचार अनक दास कीर्त करे तुहारी सोई मिले जो पावतो जन नानक ठाकुर रहो समाए।

तान मांगो तां लक्ष्मी सुध देहे मुगत जुगत भुगत पूरन परमानंद परम निधान पाए पाए भगत निहाल नानक सदा सदा कुर्बान। कानड़ा महला पंजवां करत करत चर्च चर्च चर्चरी चर्च।

तेरा जस स्वामी तिन काटे पाप कटोना तुम जैसे हर पुरख जाने मत गुरमत मुख वड वडभाग वडोना सब त्याव आद सते जुगाद सते प्रतख सते सदा सदा सते जन नानक दास दसोना सरोक मोहला चौथा हमरे हर जग जीवना हर जप्यो हर गुरमंत हर अगम अगोचर अगम हर हर मिलया आए अचिंत हर आपे कड़ कड़ वर्तदा हर आपे आप बेअंत हर आपे सब रस भोगदा हर आपे कवला कंत हर आपे पिखया पाएदा साब सेट पाई जी जंत।

हर प्रसज्जन नाम हर मैं मनतन नाम शरीर सब ऐसा गुरमुख पूरिया जन नानक सुन हर तीर पौड़ी हर उत्तम हरिया नाम है हर पुरख निरंजन मौला जो जपदे हर हर दिन सरात तिन सेवे चरण नित कौला नित सार समाले सब जी जंत हर वसे निट सब जौला सो बूझे जिस आ बुझाए सी जिस सदगुर पुरख प्रसौला सब गावो गुण गोविंद हरे गोविंद हरे गोविंद हरे गुण गावत गुणी समोला सलोक महला चौथा सुत्या हर प्रवचेत मान हर सहज समा समाए जन नानक।

उत्तम घर प्रभ नाम है, गुरभजन सुभागे लीता, दुख दाल दिल सबो लह गया, जान नाव गुरु घर दीता, सब सेवो मोहनो, मन मोहनो, जग मोहनो, जिन जगत्यो पाए सबो वस कीता। श्लोक महला चौथा, मन अंतर होम में रोग है, ब्रह्म फूले मनमुख दुर्जना, नानक रोग वन्याय, मिल सदगुर साधु सज्जना। महला चौथा, मन तन ताम सगारवा, जां देखा हर नैणे, नानक सो प्रामय मिले, हो जीवा साध सुने पौड़ी, जगन्नाथ जगदीश सर करते, अपरंपर पुरख अतो।

आपे जगन्नाथ गुर उपदेशवर नाम ते आयो सब किल बिख दुख लाथे रखाओ रसना एक जग गाए न साकै बहु कीजे बहु रसन थे बार बार खिन पल सब गावे गुण कह न सके प्रभ तुमन थे हम बो प्रीत लगी प्रभ स्वामी हम लोचे प्रभ दिखन थे।

रामो राम रवीजे, साधु साध साधन नीके, विल साधु हरंग की जय रघाओ। जी जंत सब जग है जेता, मन डोलत डोल करीजे, कृपा कृपा कर साध मिलावो, जग थम मन को।

चरण तल दीजे, गुरमुख जोध पली शिव नीकी, आन पानी सगत परीजे, मैन दंत निकसे गुरबचनी, सार चब चब हरस पीजे, राम नाम

साधु साध साध मन प्रीतम बिन देखे रहे ना सकी जय। ज्यों जल मीन जलंग जल प्रीत है खेन जल बिन फूट मरीजे। महा अपाग अपाग है जिनके जिन साधु तूर न पीजे। तिना तिसना जलत जलत नहीं बूझे डंड तरमरा एका दीजे। सब तीर्थ वर्त जग पुन

तेरा गहना मत मकसूद नाए तेरे नाओ मने सब कोए विण नावे पद कभो न होए अबर सियाण सगली पाज जय बक्से तै पूरा काज रखाओ नाओ तेरा तान नाओ दीबान नाओ तेरा लश्कर नाओ सुल्तान नाए तेरे मान महत प्रवान तेरी नदरी कर्म पवे निशान नाए तेरे सहज नाए सालाह नाओ तेरा अमृत बिख उठ जाए नाए तेरे सब सुख वसे मन आए बिन नावे बादी जम पुर जाए नारी बेरी घर दर देश मन किया खुशियां की तैवेश या सदे तां ठिल न पाए नानक कूड़ कूड़ो होए जाए प्रभाती महला पहला तेरा नाम रतन कर्म चानन सुरत तिथे लोए अंधेर अंधी वापरे सगल लीजे खोए यो संसार सगल बेक

की वास बनस्पतौरे ता चरण लिव रही है। गुरमुख जी प्राण उपजे, गुरमुख शिव कर जाई है, गुरमुख नानक सच समाई है, गुरमुख निज पद पाई है। प्रभाती मुखला पहला गुर प्रसादी विद्या विचार, पड़ पड़ पावे मान आपा मध्य आप प्रगासया, पाया अमृत नाम करता तू मेरा जजमान।

काल विध्वंस मनसा मनमारी गुर प्रसाद प्रापाया आत्रस रंग चलू ले राती दूजा रंग न कोई नानक रसन रसाए राते रव रहया प्रसोई।

लेव उन मन नाम लगान, अमृत रस पिया गुर शब्दी, हम नाम मिटो कुर्बान, अमरे जग जीवन हर प्राण, हर उत्तम अंतर पायो, गुरमंत दियो हर कान रखाओ, आभो संत मेरो मेरे पाई, मिल हर हर नाम वखान, कित विद क्यों पाइये प्रभ अपना, मोको करो उपदेश हर दान, सत संगत मैं हर हर वसया, मिल संगत हर गुण जान, वड़े भाग सत संगत पाई, गुर सतगुर परस भगवान, गुण गावे प्रभ अगम ठाकुर के, गुण गाए रहे हैरान, जन नानक गौ गुर कृपा धारी, हर नाम दियो खिनदान, प्रभाती महला चौथा, उगवे सूर गुरमुख हर बोले, तब रैन संभाले हर गाल, हमरे प्रभ हम लोच लगाई।

सतगुर प्रसाद मन हर किया तन सब साजिया पंच तत् रच जोत निवाजिया सेजा धरत बर्तन कौ पानी निमख नाम सार हो सेव ओ सारग पानी मन सतगुर सेव होए परम गते हरक सोग ते रहे निरारा तां तू पावे प्राण पते रहाओ कापड़ भोग रस अनक पुंचाए माल पिता कुटुंब सगल बनाए निजक समाहे जल थल मीत सो हर सेव हो नीता नीत तां सखाई जे कोई न होवे कोड अपराध एक खिन मैं तोवे दाद करे नी पछोतावे एक का बक्स फिर भौर ना बुलावे।

गुण गावत मन होए आनंद, आठ पैर सिमरो भगवंत, जाके सिमरन कर मल जाहे, तिस गुर की हम चरणी पाहे, सुमत देव हो संत प्यारे, सिमरो नाम मोहे निस्तारे रखाओ, जिन गुर कहया मार्ग सीधा, सगल त्याग नाम हर गीदा, तिस गुर कह सदा बल जाइए, हार सिमरन जि गुर ते पाईए, बूढ़ प्राणी जिन गुरे तराया, जिस प्रसाद मोहे नी माया, हलत पलत जिन गुरे सवारिया।

पुरचरना निरपय साध परेहर सरना आनंद सहज रस सुख कनेरे दुश्मन दुख न आवे नेरे गुर पूरे अपने कर राखे हर नाम जपत केलबग सब लाथे संत साजन सिख पय सुहेले गुर

तर स्नान तर चक्र बनाए अंतर की माल तब ही ना जाए एत संजम प्रभ किन ही ना पाया भगवती मुद्रा मन मोया माया रहाओ पाप करे पंचा के बसरे तीर्थ नाए कह सब उतरे बौर कमावे हुए निशंक जंपुर बांध करे कालंक घूंगर बांध बजा

पूर्ण पुरख भगवान है, भगत वत्सल करुणामय है, घट घट बसंत वासुदेव है, पार ब्रह्म परमेश्वर है।

परम पुरखोत्मं तब प्रसाद सिमरते नामं नानक कृपाल हर हर गुरं परन पोखण करंत जिया विश्राम शादन देवंत दानं सिरजंत रतन जन्म चत्र चेतन वर्तंत सुख आनंद प्रसाद है सिमरंत नानक हर हर हरे अनित रचना निर्मोते दानं परापूर बेण कुंचंते महीपते विपरीत बुद्धि अंग।

तरंग रूपंग नाच दुर्लभंग तुर्ग राजन है नाच दुर्लभंग भोजनंग व्यंजनंग नाच दुर्लभंग स्वश अंबर है नाच दुर्लभंग सुत मित्र प्रात बांधव नाच दुर्लभंग बनता विलास है नाच दुर्लभंग विद्या प्रवीण नाच दुर्लभंग चतुर चंचल दुर्लभंग एक भगवान नाम है नानक लब्धयंग साध संग कृपा प्रभंग जात कत है तत दृष्टंग स्वर्ग मर्त पर।

ज्ञानं हम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वायरण दयालं सर्वत्र जिया पंच दोख विवर्जित है भोजनं गोपाल कीर्तनं अल्प माया

रमंत गुण गोविंद नित प्रतय तारण शरण स्वामी रामण सील परमेश्वर है करण कारण समर्थ है दान देत प्रापूर्ण है निरास आस करण सगल अर्थ आले है गुण निधान सिमरंत नानक सगल जाचंत जाचक है दुर्गम स्थान सुगमं महादुख सर्व सुखण है।

नरक विश्रामं भोजोन्नी परमामण चित हरणं त्रैलोक गम्यं जब तब सील विदारण अल्प सुख अवित चंचल ऊच नीच समामण तब भय विमुंच।

नाना उपर्जते विख्यंत जीवं वस्यं क्रोत नृत्यं क्रोत जथा मरकट अनक शासन ताड़ंत जम दूत है तब संगे अधवं नर है दीन दुख भंजन दयाल प्रभ नानक सर्ब जी रखया क्रोत ए लोभा लंपट संग सिर मोर है अनक लहरी कलोलते धावंत जी आभो प्रकारं अनक पांद बौ डोलते नच मित्रं नच इष्टं नच बांधव नच मात पिता तव लज्जया अकरणं क्रोत अखात खाद्यं असाज्यं सा समझया त्राहे त्राहे शरण स्वामी विज्ञापत नानक हर नर हर हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा मित्रं तजंत सत्रं दृढ़ंत अनक माया विस्तीर्ण है आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बहु भोगण परम भयान उद्यान रमण मां विघट असाध रोगण है पैदं पार ब्रह्म परमेश्वर आराध नानक हर हर हरे

दुख हरो हे शरण जोग दयाल है दीना नाथ मया करो शरीर स्वस्थ खीण समय तिमरंत नानक राम दामोदर माधव है चरण कमल शरण रमण गोपाल कीर्तन साध संगेण तरण नानक महासागर पय दुत्र है सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मं हस्त काया रखिया परमेश्वर है।

अपार गोविंद है बसंत साध हृदय अचुत बुझंत नानक बड़पागी है उदयान बसन संसारं संबंधी स्वान सियाल खर है विखम स्थान मन मोह मदरं मां असाध पंच तस्तर है हीत मोह पय परम ब्राह्मण अंग फांस तीक्षण कठन है पावक तो असाध कोरं अगम तीर नय लंघन है भज साध संग गोपाल नानक हर चरण शरण उदरण कृपा कृपा करंत गोविंद गोपाल है सगलिंग रोग खंडन है सा संगेन गुण रमत नानक शरण पूर्ण परमेश्वर है श्यामलंग मधुर मानुखयंग हृदय भूम वायरण है निवंत होवंत मिथ्या चेतनंग संत सुवजन है अचेत मूड़ा ना जानंत कटंत सासा नित प्रत छिजंत महासुंदरी काया काल कन्या ग्रास्ते अचंत पुरख कुटंब लीला नित अस विख्या विनोद प्रमंत प्रमंत भोजन महारयो शरण नानक करणामय हे जेबे हे रसगे मधुर प्रिया तोयंग सत हदंग परम बादंग अवर्तित है सुध अशरण गोविंद दामोदर माधव गर्भवंत नारी मदोर मतंग बलवंत बलाद कारण है चरण कमल नय पजंत तरण समान तिग जन्मन हे पपीर का ग्रस्ते गोविंद सिमरण तो

काजल की कोठरी अंध परे तिस माहे हौं बलिहारी तिन कौ पैस जो नीकस जाहे कबीर इहो तन जाएगा।

तो लूट ले, आराम नाम गए लूट। फिर पाशे पछताओगे, प्राण जाएंगे शूट। कबीर ऐसा कोई ना जन्मे हो।

कर करे पीवे निर्मल नीर, बिन हर भगत ना मुक्त होए, इउं कहे रमे कबीर। कबीर मन निर्मल भया,

पंखी पयो उड़ उड़ दे दिस जाए, जो जैसी संगत मिले सो तै सो फल खाए, कबीर जाको खोजते पायो सोई ठौर, सोई फिर के तू पया जाको कहता और, कबीर मारी मरो कुसंग की केले निकट जो बेर, ओ चूले ओ चीरिए साकत संग ना।

क्या करे जो राम न करे सफाए। जे जे डाली भगत रो सोई मुर मुर जाए। कबीर अवरे को उपदेश ते

ज्ञान ते धर्म है, जहां झूठ ते पाप, जहां लोभ ते काल है, जहां खिमा ते आप। कबीर माया तजी ता क्या पया, जो मान तजिया नहीं जाए। मान मुनि मुन वर गले, मान सबे को खाए। कबीर साचा सतगुर मैं मिलया, शब्द जो भाया एक। लागत ही पोए मिल गया, परिया कलेजे शेख। कबीर साचा सतगुर क्या करे, जो सिखा मैं चूक। अंधे एक न लग गई, जो बांस बजाएगे फूक। कबीर है गए बाण सगन घन।

कबीर दावे दज होत है निर्दावे रहे निसंक, जो जन निर्दावे रहे तो गने इंद्र सो रंक। कबीर पाल समोहा सरवर भरा पी न सके कोई नीर, भाग बड़े ते पायो तू पर पियो कबीर। कबीर प्रभाते तारे खिसे त्यों

चोर सहारे शब्द की, ताश गुरु मैं दास, कबीर मुल्ला मुनारे क्या चढ़े, साई ना बहरा होवे। जा कारण तू बांग देह, दिल की पीतर जोए, शेख सबूरी बहारा के हज काबे जाए। कबीर जाकी दिल साबत नहीं, ताको कहां खुदाए। कबीर

पान जो जो प्राणी खाहे तीर्थ वर्त नेम किए ते सबे रसातल जाहे नीचे लोयन कर रखो ले साजन कट माहे सब खेलो पीसो इसी लखावो नाहे आठ जाम चौसठ करी।

पीर जाओ तो साध पिरम की शीश काट कर गोए, खेलत खेलत हाल कर जो किश होए ता होए। कबीर जाओ तो साध पिरम की पाके से ती खेल, काची सरसों पेल के ना खल पई ना तेल। टूंट डोले अंध गत हर चींत नही संत, तय नामा क्यों पाई है बेन भगतो भगवंत। हर सो हीरा छाड़ कह करे आन की आस, ते नर दोजक जाएंगे

पुछई तन सुहागण नाव सोहरे पेये कंत की कंत अगम अथा हो नानक सो सुहागणी जो पावे बे परवाह नाती धोती संभही

तू साहिब सच्चे वेख बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान फरीदा जे तन भिरो ना उपजे तो तन जान मसान फरीदा एफस गंदला तरिया खंड लिवाड़ एक राय दे रह गए एक राधी गए उजाड़ फरीदा चार गवाया हंड कह चार

लोक कहे दरवेश तत्ती तोय न पल्लव जेजल टुब्बी दे फरीदा जो डुहागन रब दी चूरेंदी चूरे जां कुआरी ता चाओ विवाही ता मामले फरीदा एहो पछोताओ वत कुआरी ना थीए कलर केरी छपड़ी आए उलथे हंज किंजू बोड़न ना पीवे उड़न संधि डंज हंस उड़ कोदरे पया लोक वडारन जाए गहला लोक ना जानदा।

तन तपे तनूर ज्यो बालन हड बलन पैरी तक्का सिर जुला जे मुंह प्री मिलन तन ना तपाए तनूर ज्यो बालन हड ना बार सिर पैरी क्या फेड़े अंदर प्री निहाल हौ टूडेंदी सजना सज्जन महंडे नाल नानक अलख ना लखिए गुरमुख दे दिखाल हंसा देख तरंदिया बग्गा आया चाओ डुब मोए बग बपड़े सिर तल उपर पाओ मैं जानिया वडहंस है ता मैं कीता संग जे जाना बग बपड़ा जन्म ना भेड़ी अंग क्या हंस क्या बगला जा को नदर करे जे तस पावे नानका कागो हंस करे सरवर पंखी हेकड़ो पाही वाल पचास क्योतन लहरी गढ़ते सच्चे तेरी आस कौन सो अखर कमण गुण कौन सो मणिया मंत कौन सो वे सो हो करी जित वस आवे कंत निमण सो अखर खमण गुण जेबा मणिया मंत ए त्रै पैणे वेस कर ता वस आवी कंत मत हुंदी होए ए आणा ताण हुंदे होए निताणा अणहुंदे आ वंडाए ओ ऐसा भगत सदाए एक फिक्का ना गालाए सब नाम है सच्चा तनी याओ ना कही ठाहे मानक सब अमोल वे सब नाम मन मानक।

निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद सवैये श्री मुख बाक महला पंजवां आदि पुरख करतार करण कारण सब आपे सर्ब रहो भरपूर सगल घट रहो बेआपे व्याप्त देखिए जगत जाने कौन तेरी गत सर्व की रखिया करे आपे हर पत अविनाशी अवगत आपे आपे उत्पत एक तू ही एक आन नाही।

प्रसाद तोई पुरख सेवर साचा जाका एक नाम अचल संसार जिन भगत पवजल तारे सिमरो सोई नाम प्रधान चित नाम रसक नानक लैणा थप्यो जेन सर्व सिद्धि कवजन कल सबुदी कीर्त जन अमरदास बिस्तरिया कीर्त रव केरण प्रगट संसार है साग तरोवर मवल सरा उत्तर दक्षिण पूबर पश्चिम जय जय कार्ज पंथ नरा हर नाम रसन गुरमुख बरदायो उल्ट गंग पश्चिम तरिया सोई नाम अशल भगत पवतारण अमरदास गुर को फुरया सिमरे सोई नाम जख अर किन्नर साधक सिद्ध समाध हरा सिमरे नखेत्र अवर त्रु मंडल नारदाद प्रहलाद वरा ससियर सूर नाम उलस है सैल लो जिन उदरिया सोई नाम अशल भगत पवतारण अमरदास गुर को फुरया सोई नाम सिमर नवनाथ निरंजन शेषन काज समुद्रया चौरासी सिद्ध बुद्ध जित राते अमरीक पवज तरया उदो अक्रूर त्रिलोचन नामा काल कबीर केल बखवरया सोई नाम अशल भगत पवतारण अमरदास गुर को फुरया तित नाम लागते तीस त्यावे जति तपी सुरमन वसया सोई नाम सिमर गंगे पितामह चरण चित अमृत रसया तित नाम गुरु गंभीर गुरु मत सदकर संग उदरिया सोई नाम अशल भगत पवतारण अमरदास गुर को फुरया नाम केत संसार किरण सुर तर सख उत्तर दक्षिण पुब जेस पश्चिम जस पख है जन्म तक अथ जित नाम हरदे निवास है सुनल गण गंधर्व छे दर्शन असस पलो प्रसिद्ध तेजो तनो कल जोड़ कर त्यायो तो इना भगत फौजल हरण गुर अमरदास तय पायो नाम त्यावे देव ते तीस हर साधक सिद्ध नर नाम खंड ब्रह्मंड तारे ते नाम समाध्यो हरक शोक थम कर सगारे नाम श्रोमण सर्वम भगत रगे लिवतार तोई नाम पदार्थ अमर गुर उस दियो करतार सत सूरो सील बलवंत सत पाए संगत सगन गरु मत निर्वैर लीना ये तीर जो तुर तवल तुजा छेद बैकुंठ बीना परसे संत प्यार ये करतार है संयोग सगुरु सेव सुभ पायो अमर गुर कीतो जोग नाम नावन नाम रस खान अर पूजन नाम रस सदा चाहे मुखमिष्ट बाणी तन सतगुर सेवयो जिस पसाए गद अगम जानी कोल समूह समुद्र पायो नाम निवास सक्यथ जन्म कल उच्चर गुर परस्यो अमर पर